मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव व FM पर आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए इस पावन बेला में करते हैं उस परमपिता परमेश्वर की वंदना।

प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश, आपके चरणों में नमन है हरो सारे क्लेश। मूषक की सवारी गजमुख प्यारे, बुद्धि के भंडार, हे विनायक हर लो संकट, करो जगत का उद्धार।

दुनिया के हर इंसान को दी जिंदगी की राह। आप सा कोई और ना आया है इस जहां में, वो रहमते दो आलम है, वो नूरे मुजस्सम है, खुदा की हर नेमत छुपी है उनके पैगाम में।

क्या तेरा प्यार, क्या तेरी दया है जो हर मुश्किल में मेरी राहें सजाती हैं। थक जाते हैं जब कदम मेरे यहाँ, तेरी ही कृपा मुझको नई ताकत दे जाती है।

राम नाम की महिमा अपरंपार है। उनका गुणगान करने से सत्यवादिता, धर्मज्ञता, कृतज्ञता, करुणा, क्षमा, धैर्य और पराक्रम हमारे जीवन में भर जाते हैं।

0: वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, महेंद्र कपूर, भीमसेन जोशी और इफ्तखार अहमद व साथी। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए अनिष्ट परिणाम, इस विषय पर गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम ये हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही नहीं सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें

0: विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने ही हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने, तो वो मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। ये प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग सातवीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गेमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं भी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही नहीं था। न जाने में मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूं कि वो अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा ये गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं था। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण ये रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वो मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वो अंत तक बनी रही, और टहलना भी तो व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना रहा। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए। पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहराया गया। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं। कोई उपाय नहीं रहा। मन महसूस कर रह गया, रोया। समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी ये पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर में मैं वो जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई।
1: ये थे बापू के विचार, और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

0: अनिष्ट परिणाम, इस विषय पर अभी आपने सुनी गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए मानसिक रोग एवं आयुर्वेद, इस विषय पर स्वास्थ्य संदेश।
1: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस भोगवादी और भौतिकवादी युग में इंसान की सोच और वैचारिक स्तर गिरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप मन बेचैन रहता है और संतोष नदारद है। इस असंतुष्ट और बेचैन मन के कारण ही मनुष्य के व्यवहार और नैतिक स्तर में पतन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनेक व्याधियों से ग्रसित हो रहा है। इस कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उदर रोग, मधुमेह आदि बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही मानसिक समस्याएं जैसे चिंता, शोक, अनिद्रा, उन्माद, अवसाद से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आज बचपन खत्म हो रहा है और बाल्यकाल से ही बच्चा अत्यधिक चिड़चिड़ा, चिंता, शोक से ग्रस्त होकर उग्र स्वभाव को प्राप्त हो रहा है। ऐसे बच्चे युवा होते होते अपराध जगत और नशे की ओर अपने कदम बढ़ा लेते हैं या निराश होकर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। 9 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे, जिन्हें सामान्यतया जीवन की गंभीरता का अंदाजा भी नहीं होता है, वे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, क्षमता से अधिक कामकाज का बोझ हर उम्र के स्त्री पुरुष तथा बच्चों को मानसिक स्तर पर अस्थिर और कमजोर कर रहे हैं। मस्तिष्क की वैचारिक शक्ति का ह्रास होने से नशा, ड्रग्स, कामांधता, चोरी, डकैती, लूटपाट तथा हत्या जैसी बुराइयां समाज में बढ़ी हैं। ये सब मानसिक स्तर पर वैचारिक विकलांगता के दुष्परिणाम हैं। यही कारण है कि लोगों में सहनशीलता और आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। अतः आज आवश्यकता है मन को स्थिर कर सोचने समझने की, अपने कर्तव्य पथ पर साहस और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की तथा अवसाद से बाहर आकर अपने आत्मविश्वास को जगाकर स्वयं अपने परिवार तथा समाज में अपना यथेष्ट योगदान देने की। मानसिक रोग के यदि लक्षणों की बात करें तो इसमें चिंता के साथ भय उत्पन्न होता है। चिंता की अवस्था में एकाग्रता, विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता तथा स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। 20 से 40 वर्ष की अवस्था में यह रोग अधिक दिखाई देता है तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज्यादा दिखाई देता है।

0: ऐसे रोगियों को किसी गंभीर बीमारी का भ्रम होने लगता है, यानी जो बीमारी हुई ही नहीं है उसकी उपस्थिति का आभास होने लगता है। जैसे पेट के रोग, हृदय रोग तथा यौन रोग न होते हुए भी व्यक्ति उनसे अपने को पीड़ित मानकर अशांत, व्याकुल और घबराया हुआ रहता है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक संकट के न होते हुए भी उन्हें मानकर परेशान रहता है। मानसिक रोगों की चिकित्सा में सर्वप्रथम कारणों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। उचित आचार विचार और आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए। औषधि सेवन के साथ साथ यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि रोगी का पारिवारिक वातावरण सकारात्मक हो, रोगी को कभी अकेला न छोड़े। उसके जीवन में आशा का संचार करते हुए उसे यकीन दिलाना होता है कि जो कुछ उसके लिए अच्छा है वह सब कुछ किया जा रहा है। वह अकेला नहीं है बल्कि परिवार व स्नेहीजन उसके साथ हैं। ऐसे रोगी का चिकित्सक के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। औषधीय उपचार के रूप में मानसिक रोगी को ज्योतिषमती रसायन की 1-2 गोली तथा शंख पुष्पी की 2-2 गोली दूध के साथ दें। इसके अलावा बादाम, अखरोट, किशमिश का सेवन कराएं। बादाम पाक की 1 चम्मच या बादाम तेल की 4-5 बूंदें दूध के साथ दें। बादाम, खसखस, तरबूज के मगज का देसी घी में बना हलवा अवसाद के रोगी के लिए बहुत लाभकारी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे मानसिक रोग एवं आयुर्वेद, इस विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा का ये स्वास्थ्य संदेश। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
3: जिस देश में हमने जन्म लिया,
2: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
3: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
2: उस धरती का ऋण है हम पर।
3: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, ये आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग, भाग संख्या 305। सवेरे 7 बजे आप सुन सकेंगे बदलती शिक्षा बदलता समाज, इस विषय पर समरीन फातिमा की एक वार्ता। कार्यक्रम होगा विविधा।

सवेरे 7:31 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम भी रहेगा, तो सुनना ना भूलिएगा। साथ ही 8:45 पर आपको सुनवाए जाएंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

फरमाइएगा उर्दू प्रोग्राम। सवेरे 10:30 पर सुनना न भूलिएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल BSF अलंकरण समारोह तथा रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समय याद रखिए, सुबह 10:30 पर।

दोपहर 1:15 पर आप सुन सकेंगे नात कव्वाली। आज के कलाकार होंगे मुबारक हुसैन।

0: श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड में आज का प्रसंग,
1: एपिसोड नंबर 305। 305।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: बारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता।
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक
2: अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडौलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडौलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्परहितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीय सहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम्, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गा तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 89 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30+200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपणचक्रेषु 40+100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत बदलती शिक्षा बदलता समाज, इस विषय पर समरीन फातिमा की ये वार्ता।
4: एकता और समानता क्या है? शिक्षा लोगों में समानता लाने का कार्य करती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में नए मूल्यों को निर्धारण होता है। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का बदलाव क्या है? शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। पहले शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित थी, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच ही बातचीत होती थी, परंतु आज के आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। सामाजिक परिवर्तन ने शिक्षा को बदला है और शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तन आए हैं, और आज हम डिजिटल तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में समाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस परिवर्तन से शिक्षा सुलभ और प्रभावी हुई है। इससे विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस बदलाव से विद्यार्थियों की समझ और भी बेहतर हुई है। समय के साथ अब शिक्षा का उद्देश्य भी बदल रहा है। अब शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं प्राप्त की जाती, बल्कि शिक्षा को एक सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक और नागरिक की और ख़ास जिम्मेदारी समझा जाता है। इस बदलाव से समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। इस प्रकार शिक्षा का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है और ये बदलाव समाज की ज़रूरतों और प्रगति के स्वरूप अनुरूप होता है। आधुनिक शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान

करती है, बल्कि इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करती है। शिक्षा के बदलते स्वरूप को कैसे समझना है? शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप से समाज में बदलाव आ रहे हैं, और इन बदलाव को समझने के लिए शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक माध्यम है जो जीवन को एक नई विचारधारा प्रदान करता है। अगर शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो एक व्यक्ति न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन आज हर वर्ग तक पहुंच रही है, जो सामाजिक बदलाव ला रही है। आज बदलती शिक्षा समाज को नई दिशा दे रही है। शिक्षा हमेशा से समाज का दर्पण रही है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सामाजिक बदलाव में इनकलाब पैदा कर दिया है। आज बदलती शिक्षा समाज को कई तरह से परिवर्तित करती है, जैसे शिक्षा लिंग, जाति, धर्म और आर्थिक बाधाओं को तोड़ कर रही है, महिलाओं और वंचित वर्गों को अवसर प्रदान कर रही है, आर्थिक विकास हो रहा है जिससे बेरोजगारी धर रही है, जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा बदलते समाज की कुंजी है जो प्रगतिशील भारत का निर्माण कर रही है। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि शिक्षा से समाज में हालांकि सकारात्मक बदलाव अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नकारात्मक बदलाव भी हैं जिनको मैं यहाँ पेश करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। हालांकि ये नकारात्मक प्रभाव एक चुनौतियों के रूप में ही जिनके एक अच्छी कार्यशैली से निपटा जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में जब कभी आती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता और वो समाज निर्माण में कोई विशेष योगदान नहीं कर पाता। जब शिक्षक को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता तब उसकी शिक्षा प्रदान करने की क्षमता प्रभावित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दौर डिजिटल शिक्षा का है, और आजकल शिक्षा के लिए नए नए प्रोजेक्ट उपकरण इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसों और लैपटॉप जैसी महंगी डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है एक आम बात हो गई है। परंतु इन महंगे उपकरणों को कभी-कभी ग्रामीण लोग आर्थिक स्थिति के कमजोर होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, कारण वो इस डिजिटल प्रणाली से दूर रह जाते हैं। इसे एक और प्रकार से वर्णित किया जा सकता है कि महंगे डिजिटल उपकरण खरीदना सभी के लिए मुमकिन नहीं है। इसी के साथ हमारे देश में अनेकों ऐसे दूर बसे गांव देहात जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इन महंगे उपकरणों को खरीदना भी व्यर्थ साबित होता जा रहा है। भारत में एनईपी ने 2020 में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए और उचित शिक्षा में बदलाव देखने को मिला, जिससे हमारे समाज में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। एनईपी ने सभी छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, वो चाहे समाज रूप से वंचित हों या आर्थिक रूप से हों, बढ़ावा दिया है। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 मॉडल को बदलकर 5+3, 3+3, 3+4 संरचना लागू की, जिससे समाज पर और शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और समाज आपस में गहन संबंध रखते हैं। शिक्षित व्यक्ति समाज में जागरूकता फैलाता है, बुराइयों का विरोध करता है, भलाई करता है और सदियों से चली आ रही परंपराएं और नवाचार लाता है, और सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाओं को खत्म करता है। शिक्षा ही वो सोच है जो किसी देश के आर्थिक मूल्यों, उस देश की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखती है और शांति, व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखती है। मैं इस शेर के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। दिल करता है सफ़र रोशनी का मैं बन जाऊँ, दिल करता है सफ़र रोशनी का मैं बन जाऊँ,
शिक्षा की लौ बनकर समाज के अंधेरों को खत्म कर जा।

0: शिक्षा की लौ बनकर समाज के अंधेरों को खत्म कर जाऊं।
1: बदलती शिक्षा बदलता समाज, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे समरीन फातिमा की वार्ता। कार्यक्रम था विविधा। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हमारे भारत में सदा एकता का वास रहे,
1: समाज में सदा आपसी प्रेम का आश्वास रहे,
0: देश में सदा भाईचारे और नैतिकता का निवास रहे
1: और हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता में सदा उजास रहे।
0: आइए मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें भारतीयता का, मनुष्यता का सदा वास रहे।
2: सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश की पवित्र परंपरा है।
3: हम किसी भी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के हों,
2: किसी भी प्रदेश में रहते हों, सबसे पहले हम भारतीय हैं।
3: यही हमारी पहली पहचान है।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: धर्म वह माध्यम है जिससे हम शांति पा सकें।
1: प्रत्येक धर्म का सार मानवता की सेवा है।
0: हमारा पहला कर्तव्य मानवता की सेवा है।
1: ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय कोई भेदभाव नहीं किया।
0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है।
1: मेघ धर्म या जाति देखकर नहीं बरसते।
0: यहाँ तक कि हमारे लहू का रंग भी एक है।
1: तो हमारा कर्तव्य है कि हम
0: अपने समस्त भेदभावों को मिटाकर एक साथ
1: मिलकर इस धरती को सुंदर बनाएं।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है।

0: हमारे भारत में सदा एकता का वास रहे,
1: समाज में सदा आपसी प्रेम का आश्वास रहे,
0: देश में सदा भाईचारे और नैतिकता का निवास रहे
1: और हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता में सदा उजास रहे।
0: आइए मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें भारतीयता का, मनुष्यता का सदा वास रहे।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एथे उन्होंने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए।

0: उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

एक बार फिर कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर हूं मैं आपका साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की दुनिया में सब कुछ बहुत फास्ट हो चुका है। इंटरनेट फास्ट, लाइफ फास्ट, लोग भी फास्ट हो गए हैं। पर एक चीज़ है जो धीरे धीरे से ख़त्म हो रही है, वो है इंसान के अंदर की शांति या कहें तो सुकून। हमारे पास सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। फ़ोन है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट भी है, और साथ ही साथ वो लोग भी हैं, और लोग ना हो तो और ऑप्शंस भी हैं। फिर भी पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, एक ऐसा खालीपन सा महसूस होता है जो समझ नहीं आता, पर महसूस हर रोज़ होता है। जानते हैं दोस्तों ये क्या चीज़ है? अपने लिए जीना एक दिन में नहीं आता। जी हाँ, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि हम अपने लिए समय नहीं निकालते। हम सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, हम अपने आप को ज़बरदस्ती व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, और ये उसकी वजह यही है कि हमें फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। तो अपने लिए वक्त निकालिए, और ये तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी किसी और की मंजूरी पर टिकी नहीं है। हमसे ज़्यादातर लोग बरसों तक दूसरों की उम्मीदें ढोते रहते हैं, घर की, समाज की, रिश्तों की, और बीच में कहीं खुद को भूल से जाते हैं। जब आप अपने लिए जीना सीखते हैं, तब आप किसी के खिलाफ नहीं जाते। आप घर के साथ भी रहते हैं, समाज के साथ भी रहते हैं, और रिश्तों को भी पकड़ कर रखते हैं। बस आप अपने पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि दिस शिफ्ट इज क्वाइट बट इट चेंजेस एवरीथिंग। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों से दूर भागने लगें, इसका मतलब ये है कि आप रिश्तों में रहते हुए भी खुद को खोते नहीं हैं।

श्रोताओ, तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि अपनी खातिर जिएंगे तभी आपका दिल खुश होगा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री जावेद रहीम जी से बातचीत, जो कि हमने की। आप हैं एक कवि और साथ ही आकाशवाणी के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत।

0: जावेद जी, सबसे पहले तो आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से भी आपको नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए चुना, और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरी क्या सोच है आपके आकाशवाणी के लिए, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक बार परिचय दें।
1: आपने नाम मेरा लिया कि जावेद रहीम मेरा नाम है, और मैं यहाँ पुरानागंज कीरबाज खां रामपुर का ही निवासी हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन भी यहीं से की, पीएससी किया, फिर एमबीए किया, और उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया, और बिजनेस में आने के बाद फिर मेरा पहाड़ों पे अक्सर जाना होता था, वहाँ पर मेरी सप्लाईज थी,
0: जी
1: तो मैं वहाँ जब पहाड़ों में रहता था तो शाम के बाद वहाँ जिंदगी बिल्कुल किल हो जाती है, आप
0: जी
1: होटल से बाहर निकलेंगे तो वो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, तो वो मैं अपने होटल के कमरे में ही रहता था और कुछ ना कुछ लिखता रहता था, और इस तरीके से वो बाहर रहता था तो कुछ जज्बात भी आते थे, कुछ एहसास होती थी चीजें, वो मैं कलम पे उतारा करता था, और इस तरीके से मैंने वहां पोइट्री शुरू करी, पोइट्रीज लिखना शुरू करी, 8-10 साल पहले की बात है। तो इसी तरीके से मैंने जब पोइट्री लिखना शुरू करी तो यहाँ का एक लोकल अखबार है रामपुर का ऐलान, उन्होंने मेरी पोइट्रीज को, कविताओं को छापना शुरू किया, लोग मेरे बारे में जानने लगे और अप्रिशिएट किया, अब
0: जी
1: दोनों ही चीजें होती हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ ना पसंद करते हैं, तो पसंद करने वालों की तादाद ज्यादा थी, और उन लोगों ने मेरी कविताओं को, मैं हिंदी में लिखता था
0: जी
1: और वो अपने उर्दू के अखबार में उसको वैसे ही छापा करते थे, तो मैं उनका भी थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, और उस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया, फिर दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर मैं आपके रेडियो स्टेशन पे मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहां पर पिछले 8-10 साल से मैं आपके यहाँ प्रोग्राम दे रहा हूँ, और मुझे बुलाया जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे मन से अपनी कविताएं वहां सुनाता हूँ, और कविता पाठ होता है, काव्य गोष्ठी होती है, तो
0: जी
1: उसमें मुझे मौका मिलता है, और मैं अपने दिल की बात जो मैं अपनी कविताओं में लिखता हूँ, अपने शब्दों में उतारता हूँ, जो एहसास मुझे जिंदगी के साथ होते हैं, तो उसका मौका मिलता है, तो मेरे लिए तो आकाशवाणी मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मैं थोड़ा एक्साइट हुआ जब आपने मुझे फोन किया कि हम आपकी आकाशवाणी के लिए ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके ख्यालात जो है इस तरह के हैं आकाशवाणी से जुड़े हुए। चीज और हम बहुत ज्यादा हर्ष भी महसूस कर रहे हैं आपको ये बताते हुए कि आकाशवाणी के जो स्टेशन हैं वो 90 साल पूरे करने वाले हैं अपने। तो श्रोताओं से लेकर और जो ये आकाशवाणी के माइक्रोफोन का जो सफर है, इस सफर को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत ही बेहतरीन सफर, बहुत ही बेहतरीन कवरेज, और ऐसी कवरेज कि जो गांव गांव पहुंचती है, जो उन जगहों पर पहुंचती है कि जहां ना सिनेमा है ना कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन है, और कोई किसान अगर अपने खेत के ऊपर कोई काम कर रहा है या खेत पर है वो बैठा, तो वो अपने ट्रांसिस्टर से और अपने मोबाइल से, या ज्यादातर तो ट्रांसिस्टर ही वो लोग रखते हैं, तो उससे वो अपना दिल भी बहलाता है और आपसे रूबरू भी होता है, और वो गाने सुनता है, मनपसंद गाने उसके, और प्रोग्राम भी होते हैं उसमें, किसानों के मतलब के कार्यक्रम होते हैं, तो एक बहुत बड़ी कवरेज है इसकी। और मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं अक्सर जब जाता हूं अपनी गाड़ी से, तो उसमें पेन ड्राइव भी है, सीडी प्लेयर भी लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने जो आपका आकाशवाणी रेडियो स्टेशन है उस पर ही मैं अपना फिक्स कर देता हूँ, और किस जो जो गाने आते हैं, और एक बड़ी मुझे बड़ी खुशी है, मैं मिलना भी चाहता था
0: जी
1: आपके यहाँ, और उस शख्सियत से भी मिलना चाहता था कि जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, वो फरमाइशी गाने, نہایت ہی بہترین. تو اس میں گانے کا مزہ تو آتا ہی ہے, لیکن وہ لوگ جو گاؤں میں بیٹھے ہیں, جو مہیلائیں جو سلائی کا کام کر رہی ہیں, مزدوری کا کام کر رہی ہیں, اور جو کسان کھیت کے اوپر اپنی کھیتی کر رہے ہیں, تو وہ کس طریقے سے اپنے تاثرات, اپنی محبت اور اپنی پسند اس پروگرام کے لیے رکھتے ہیں, اور وہ کچھ اب ان سے دو شبد بولنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ جس طریقے سے اپنی بھاوناؤں کو پریرت کرتے ہیں, اپنی بات کو کہتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ سننے میں بھی. تو یہ اتنی بڑی کوریج ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کہاں کہاں پہنچتے ہیں اور کتنے لوگوں کے دل کو دلجوئی کرتے ہیں اپنی, اور جو پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں ہے. اتنی خوبصورت آواز ہے, اتنی خوبصورت آواز ہے, انداز بیان جو ہے نہایت ہی بہترین ہے. میں تو بالکل اٹریکٹ ہو جاتا ہوں, اور میں پورے راستے اور جب بھی میں ہوتا ہے تو میں پروگرامز کو ہی سنتا ہوں اپنی گاڑی میں. میرے یہاں نہ پین ڈرائیو چلتی ہے نہ سی ڈی چلتی ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. تو یہ میری بہت بہت شبھ کامنا ہے کہ 90 سال آپ کے پورے ہوئے. میری یہ دعا ہے کہ میں, میرے بچے, میرے بچوں کے بھی بچے, اور بھی سماج سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ آپ سے جڑے رہیں اسی طرح, اور آپ سماج کی سیوا کرتے رہیں. بہت بڑی سیوا ہے یہ.
0: بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم بھی آشا کریں گے کہ آپ کا جو آنے والا جیون ہے وہ سوستھ ہو, اور سبھی بچوں کا جیون بھی جو ہے کامیابی کی طرف بڑھے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا.

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री जावेद रहीम से हमारी बातचीत। आइए अब आपको बता दें कि आज क्या

आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों, प्राकृतिक संरक्षण और मानव गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये दिन पहली बार 1993 में मनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सन 2026 यानी कि इस साल की जो इसकी थीम है वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। सो ये थीम इस बात पर जोर देती है कि कैसे समुदाय और स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे छोटे प्रयास मिलकर जैव विविधता के नुकसान को रोकने और पलटने में एक बड़ा वैश्विक बदलाव ला सकते हैं। श्रोताओं, ये तो बात हुई कि आज क्या है खास। इसके अलावा भी आज बहुत कुछ जो है खास है, जैसे कि आज के इतिहास के बारे में। 22 मई का दिन एक महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है, लेकिन भारतीय खेल और साहसिक उपलब्धियों के लिहाज से ये दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन 1984 में भारत की पहली महिला पर्वतारोही पछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा था। साथ ही आज ही के दिन 1545 में एक विस्फोट में शेरशाह सूरी की मौत हुई थी। 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया। 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 1988 में भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक प्रक्षेपण अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1990 में उत्तरी दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय हुआ। साथ ही 2001 में दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ी। श्रोताओं, आज ही के दिन जन्मे 1772 में राजा राम मोहन राय, जो कि एक धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति रहे। 1813 में रिचर्ड वागनर, प्रसिद्ध जर्मन संगीतकार जिनका योगदान ऑपेरा संगीत के लिए रहा। 1925 में मदन लाल मधु हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक रहे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के इतिहास की, और अब वक्त है एक प्यारे से गीत का। आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि आपसे और बातचीत की जाए, पर जाते जाते एक वादा कि अपना ख्याल रखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए धूप में ज़्यादा ना निकलें, और अगर निकलें तो पूरे एहतियात के साथ निकलें। गमछा, छाता और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार

0: रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि सियासत से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतों, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर

0: दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
5: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of seven big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
6: The International Big Cat Alliance IBCA summit was being organized in conjunction with the 4th India Africa Forum summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India Africa Forum summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries, the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
4: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior Railway Board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
7: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
4: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
8: The three-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25 June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the SIT must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIINewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the

0: एक रिपोर्ट।
1: बिग कैट अलायंस की बैनुल अक्वामी सरबरा कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबरा मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट से जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने, माहौलियाती पायदार निजाम और हयातियाती तनवों के तहफ्फुज़ की समत आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूंकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसीतर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाए। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक वजारत के मुताबिक इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और मुतालिका इदारों के साथ सलाह मशवरे के बाद सरबराह कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सामर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रेलवे बुनियादी ढांचे और ट्रेन आमदोरफ्त को निशाना बनाए जाने के हालिया वाकयात के तनाजुर में रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो सफर करते वक्त चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कल नई दिल्ली में रेल भवन में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद यह अपील की गई है। इस मीटिंग में रेलवे के वुजराए ममलिकत वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के सीनियर अहदेदारों और मुख्तलिफ फील्ड अफसरों ने भी शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रेलवे की वजारत के मुताबिक कई हालिया वाकयात की अब तक की छानबीन से समाज दुश्मन अनासिर के मुलव्वस होने का इशारा मिलता है। रेलवे हिफाजती फोर्स इन वाकयात की सरगर्मी के साथ जांच कर रही है। मीटिंग में इस बात से मुतला किया गया कि कई वाकयात में रेलवे के हुक्काम की जानिब से बरवक्त और पेशबंदी की कार्रवाई से बड़े वाकयात की रोकथाम में मदद मिल सकी है। रेलवे ने कहा है कि वो मुसाफिरों की सलामती, रेलगाड़ियों, स्टेशनों और वसीतर रेल नेटवर्क की सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने की खातिर मस्नूई जहानत, ड्रोन्स और सीसीटीवी निजाम जैसे जदीद तर्ज के तकनीकी वसीलों के इस्तेमाल में इजाफा कर रही है। इस पहल पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आबरूरेजी और कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। तीन अरकान पर मुश्तमिल एसआईटी की क्यादत मशरकी जोन के लिए सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर करेंगे। अदालत ने 3 से 25 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस शांपा सरकार और तीर्थंकर घोष पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने 9 अगस्त 2024 को मकतूला के रात के खाने से लेकर उसकी आखिरी रसूम तक के हालात वाकयात की छानबीन करने का हुक्म दिया है। एजेंसी को सभी मुतालिका पहलुओं की तहकीकात करने की आजादी भी दी गई है। अदालत का यह फैसला मकतूला के कुनबे की जानिब से बार बार इन तशवीश के बाद सामने आया है कि शवाहिद से मुबैन तौर पर छेड़छाड़ की जा सकती है और हकायक को छुपाया जा सकता है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि एसआईटी मजमूई तहकीकात को यकीनी बनाने की खातिर हर तफसील की जांच करेगी। 2024 में पेश आए इस वहशियाना वाकये ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया था, जिसके बाद संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों ने इंसाफ की मांग को जिंदा रखा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा अहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्वस होने के बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفرآباد میں ایک پرائیویٹ کالج

0: के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहरा 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लों ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहरा 44 पर एक पुल के नजदीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाकई मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके कयाम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकतदार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वुजरा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी के गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आईएमडी ने पंजाब और मकरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग, बहरान के दौरान अवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम, तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے، ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا آغاز، 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں خصوصی نظر ثانی مہم چلے گی۔ وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا، روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی صفحے پر دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع، 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائلس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آجیگر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں، اب سمے ہے 102.9 مارننگ ہٹس کا۔

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बी हैप्पी से। आवाज है सुनिधि चौहान और नूरा फतेह अली खान की।

अभी आपने सुना दंगे फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था ध्रुव विश्वनाथ ने। कार्यक्रम का अगला गीत फराज फिल्म से, आवाज है खालिद।

0: अभी आप सुन रहे थे 102.9 मॉर्निंग हिट्स।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियां लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेसवे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
2: ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद जिले से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिलेंगे।
1: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी कि 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में, पंजीकरण के बाद दूसरी किस्त पर सपूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलियन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
0: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
3: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंद शहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंद शहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशाला नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के

0: गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रिया से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
1: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठ के वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी पीने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
0: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनिए प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा की गौरव गाथा।

ये प्रेरक प्रसंग पर्यावरण रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन पर। सुंदरलाल बहुगुणा जी भारत के महान पर्यावरण चिंतक, समाज सेवी और प्रकृति रक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय, जंगलों और नदियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। चिपको आंदोलन में 1970 के दशक में उत्तराखंड में विशेष प्रयास किए जा रहे थे। उस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। इससे पर्यावरण और ग्रामीणों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा था। बहुगुणा जी ने ग्रामीण महिलाओं को साथ लिया और उनके साथ मिलकर चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। लोग पेड़ों से लिपट जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें काट ना सके। उनका संदेश था, पेड़ नहीं कटेंगे तो जीवन बचेगा। उनके जीवन का यह प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि अहिंसा और जन जागरण से बड़े परिवर्तन संभव हैं। बहुगुणा जी ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की ताकि लोगों को जंगलों और नदियों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। वो गांव-गांव जाकर समझाते थे कि पर्यावरण केवल प्रकृति का विषय नहीं बल्कि जीवन और भविष्य का प्रश्न है। उनकी पदयात्रा त्याग, धैर्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। वो मानते थे कि परिवर्तन लाने के लिए पहले स्वयं आगे आना पड़ता है। जब टिहरी बांध परियोजना शुरू हुई तब बहुगुणा जी ने इसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अनेक बार लंबा अनशन किया ताकि सरकार और समाज इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। यद्यपि परियोजना पूरी हुई पर उनके प्रयासों से पर्यावरणीय चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। हमें ये प्रेरणा मिलती है उनके जीवन के इस प्रसंग से कि

सादगी और सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची महानता है। वो हमें याद दिलाते हैं, यदि हिमालय सुरक्षित है, प्रकृति संरक्षित है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है।

0: अभी आपने सुना प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा की गौरव गाथा। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है उर्दू प्रोग्राम की।
1: ऐसा न हो कि होठों पे नामे नबी न हो, ऐसा न हो कि होठों पे नामे नबी न हो, जो सांस ले रहे हैं कहीं आखिरी न हो। जीने न दें ये धूप की जालिम तमाजतें, जीने न दें ये धूप की जालिम तमाजतें, उनके कदम की सर पे जो चादर तनी न हो। मौजिद सामीन बज़्म हाजिर खिदमत हैं आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ।
2: मैं मारिया खुशनूर
1: और शिवा नूर की जानिब से सलाम सुबह कबूल कीजिए।
2: सामीन, आज आपके लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं एक खूबसूरत नातिया नशिस्त। सामीन, आइए समात करते हैं नातिया नशिस्त, लेकिन उससे पहले शिवा नूर हमें बताएंगी नाते पाक की पुरनूर महफिल के बारे में।
1: जी हाँ मारिया, आपने बहुत खूब कहा। उर्दू में नाते पाक की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी खुद उर्दू ज़बान की, और इसका आगाज अहद नबवी में अरबी ज़बान से हुआ, और ये फिर फारसी के रास्ते दक्कन से होती हुई शुमाल हिंद और उत्तर प्रदेश के रामपुर की रिवायत में भी परवान चढ़ी। तो मारिया, जैसे आप जानती हैं कि सरजमीन रामपुर हमेशा से ही इल्म अदब का गहवारा रहा है।
2: बिल्कुल शीबा, और ये हकीकत है कि यहाँ पे बहुत सारे आलिम फाजिल पैदा हुए जिन्होंने
1: जी बिल्कुल
2: इस शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: ये वो मस्कन है कि जिसे गालिब ने सराहा
2: जी।
1: और यहाँ पर अदबी शऊर का अगर जिक्र किया जाए तो ये सरजमीन बहुत अहमियत की हामिल है। यह अदब का तीसरा स्कूल भी करार दिया जाता है, जिसकी अहमियत इससे दोबाला हो जाती है। यहाँ जब सल्तनतों का दौर था तो जब से लेकर आज तक यहाँ अदबी महफिलें मुनक्कत की जाती रही हैं, और यहाँ अदबी लोगों का आना जाना भी रहा है, और ये अदब की सरजमीन भी कही जाती रही है।
2: ये महफिलें अदबी होने के साथ साथ रूहानी और रुमानी दोनों तरह की होती थीं। रूहानी महफिलों में नाते पाक का सिलसिला जो पहले से चला आ रहा है वो आज तक मौजूद है और लोगों में बेहद पसंद किया जाता है, और इसकी यही पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने प्रोग्राम में एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं नातिया नशिस्त। तो शीबा, क्या कहेंगे
1: तो मारिया, इब्तदाई दौर में बाकायदा नात गोई का आगाज़ 18वीं सदी के अव्वल में दक्कन से हुआ। कुतुब शाही और आदिल शाही दौर के शुआरा जैसे कुतुब कुली शाह और वली दक्कनी ने अपनी गज़लों और मसनवियों में हमदिया और नातिया अशार कहे।
2: तो शीबा, बग़ैर ताखिर के आइए अपने सामीन को सुनाते हैं नातिया नशिस्त।
1: सामीन, आज हमने स्टूडियो में इनाकाद किया है नातिया नशिस्त का। यह समीन आकाए दो जहाँ का नाम लबों पर आते ही दिल बेचैन हो उठता है और जबां से निकलता है मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। जी हाँ समीन, जहाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आरास्ता होती है, वहाँ सिर्फ नूर और महफिल नूरानी हो जाया करती है। आकाए दो जहाँ के ज़ात पाक के हवाले से जितना भी तस्करा किया जाए वो कम है। आप ही की वो ज़ात मुबारक है कि जिसके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया, और आप ही हैं जो रोज़ क़यामत हमारी शफात फरमाएंगे। तो सामईन, आज हमने भी इस बज़्म को आरास्ता किया है नातिया नशिस्त से, और जिन हज़रात ने इसमें शिरकत की है उनके अस्माए गिरामी इस तरह हैं। जनाब कमर हसन साहब, जो सरजमीन बरेली से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सैयद अली आलिम जैदी साहब,

0: कितना वो
1: अहमद का
0: अहमद का
1: पसीना होगा।
0: पसीना
1: बेशक
0: होगा। और ये शेर भी समाप्त होना है हजरत कि मुस्कुरा कर अली असगर ने हिदायत की है,

0: होगा। और ये शेर भी समाज सुना था कि कौन समझेगा भला शाने बिलाली क्या है, कौन समझेगा भला
1: शाने
0: शाने
1: बिलाली क्या है।
0: बिलाली क्या है, कौन समझेगा भला।

0: होगा, जिसे समाप्त समास खास तौर से याद, कि अपनी पलकों पे बिठाएंगे उसे हम ला कर, अपनी पलकों पे
1: बिठाएंगे उसे हम
0: बिठाएंगे
1: लाकर।
0: उसे हम ला कर, अपनी पलकों पे

0: जिसके घर फर्शे अजा होगी मुसल्ला
1: क्या कहें क्या कहें,
0: होगा।
1: सुभान अल्लाह। तो सामईन, आप थे अपने मखसूस अंदाज के साथ जनाब मज़ाहिर अली, जो कि तशरीफ लाए थे बरेली से। और सामईन, इसी के साथ अब इस नशिस्त के अख्तिताम का वक्त आ पहुँचा है। और जिन हजरात ने इसमें शिरकत की थी उनके अस्माए गिरामी इस तरह थे: जनाब कमर हसन साहब ज़िला बरेली से, जनाब सैयद अली आलिम जैदी साहब, और जनाब मज़ाहिर अली। इसी के साथ अब अपने प्रोग्राम की मेज़बान हिबा नूर को दें प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
2: शीबा, आज आपने बहुत ही अच्छी उम्दा नाते पाक से सजी महफिल हमारे सामीन को रूबरू कराई। उम्मीद है कि हमारे सामीन को ये नशिस्त बहुत पसंद आई होगी। शीबा, हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब।
1: तो मारिया, आज आप हमारे सामईन को अगले प्रोग्राम के सिलसिले में क्या सुनवाने जा रही हैं?
2: शीबा, मैं आपको पहले एक शेर सुनाती हूँ और आप इससे समझ जाइए कि मैं क्या सुनवाना चाह रही हूँ। सब कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, सब कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी,

0: जो पिन्हा हो गई। तो शीबा, आप समझ गई होंगी कि मैं किस मौजू से मुतालिक तकरीर लेके हाजिर हूँ।
1: मारिया, मैं बिल्कुल समझ गई और हमारे सामीन भी समझ चुके होंगे कि हम उनसे क्या बात करना चाहते हैं और क्या मौजू उनके नजर करा रहे हैं। तो मारिया, आज हम बात करते हैं उर्दू शेर व अदब के हवाले से। चूंकि उर्दू शायरी जो है वो उर्दू जबान अदब की एक अहम असनाफ सुखन है,
0: जी
1: जिसे बेपनाह पसंद भी किया जाता रहा है और ये आज भी अपनी तमाम रानाइयों के साथ हमारे बीच जलवागर है। और मारिया, अगर हम बात करें उर्दू शायरी की, तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है,
0: बिल्कुल
1: जिसने पूरे ढांचे को उर्दू अदब के अपने अंदर समोए हुए है और अपने अंदर इस तरह पिन्हा किए हुए है कि अगर हम इसका अहाता करने बैठें तो शायद ये वक्त दरकार न होगा।
0: बिल्कुल शीबा। और ये भी हकीकत है कि चाहे कितनी भी बुलंद मर्तबा शायर हो
1: जी
0: या
1: बिल्कुल
0: कुछ कोई भी बुलंद शख्सियत हो, उसे इस दुनिया से जब आए हैं तो जाना भी
1: जी
0: होगा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन शख्स मर जाता है लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है।
1: जी
0: और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसने अपने कलाम के ज़रिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया,
1: जी
0: और हमारे पड़ोस के शहर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शायर जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने उर्दू अदब में एक नया रंग, एक नया इनकलाब पैदा किया। आज हम उन्हीं की ज़िंदगी से मुतालिक एक तकरीर लेकर हाजिर हुए
1: जी हाँ
0: हैं।
1: मारिया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने एक जिगर मुरादाबादी को शहनशाह मुताकज़िलील भी कहा जाता है,
0: जी
1: क्योंकि उर्दू शायरी का सदाबहार नाम है, जो कि शायरी का जादूगर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से
0: जमाने
1: हम
0: से हम
1: नहीं।
0: नहीं, बिल्कुल
1: जी हाँ मारिया, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में धड़कती रहती हैं, धड़कन की तरह। और उर्दू अदब के ये एक ऐसा नाम है कि जो उर्दू आसमानो अदब का दरख्शंदा सितारा है, जो महताब व आफ्ताब है और
0: बिल्कुल।
1: जिसकी चमक रहती दुनिया तक बरकरार रहेगी।
0: तो शीबा, आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: हम अपनी मेहमान मुकर्रर मोहतरमा गजाला तबस्सुम को दावत देते हैं कि वो खाक में क्या सूरतें होंगी उनवान के तहत हमारे सामीन को जिगर मुरादाबादी के ज़िंदगी से मुतालिक अहम मालूमात फराहम कराएं। तो सामीन, समात करके, खाक में क्या सूरतें होंगी जिगर मुरादाबादी, मुकर्रर हैं मोहतरमा गजाला तबस्सुम।
2: सरजमी मुरादाबाद को शहर जिगर होने का शर्फ हासिल है। जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर था, मगर वो जिगर के तखल्लुस से मशहूर हुए और वो 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर को शायरी विरासत में मिली थी। इनके वालिद मौलवी अली नजर और चचा मौलवी अली जफर दोनों शायर थे और शहर के बाइज्जत लोगों में शुमार होते थे। जिगर के बुजुर्गों का ताल्लुक दिल्ली से था और शाहजहां के दरबार से ताल्लुक था, लेकिन बादशाहों के गुस्से की वजह से मुरादाबाद आकर बस गए थे। इनके वालिद अली नजर एक तालीम याफ्ता और बावकार शख्सियत थे, लेकिन जिगर ने इब्तदाई तालीम अपने शहर में हासिल की, मगर रस्मी तालीम में ज्यादा दिलचस्पी ना ले सके। पढ़ाई के लिए जिगर को इनके चचा के पास लखनऊ भेज दिया गया, जहां इन्होंने 9वीं जमात तक पढ़ाई की। इनको अंग्रेजी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी अरसे में वालिद का भी इंतकाल हो गया। जिगर को वापस मुरादाबाद आना पड़ा। फिर जिगर आगरा चले गए और एक चश्मा बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे। वहीं पर वहीदन नाम की लड़की से प्यार हो गया और शादी करके मुरादाबाद वालदा के पास ले आए। जिगर मुरादाबादी को अपने दौर में जो शोहरत और मकबूलियत मिली, उसकी कोई मिसाल मिलनी मुश्किल है। उनकी ये मकबूलियत उनकी रंगारंग शख्सियत, गजल कहने का रंग और नगमा व तरन्नुम की बदौलत थी। जब उनकी शायरी तरक्की की मंजिलें तय करके सामने आई, तो सारे मुल्क की शायरी का रंग ही बदल गया और बहुत से शायरों ने सिर्फ उनकी रंगे कलाम की ही नहीं बल्कि तरन्नुम की भी नकल करने की कोशिश की। और जब जिगर अपने तरन्नुम का अंदाज बदल देते, तो इसकी भी नकल होने लगी, मगर दूसरों से उनके शीरी अंदाज या सुरीली आवाज की नकल तो मुमकिन थी, लेकिन

0: मेरा शायर थे और इनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सामईन महसूस हो जाते थे। इन्होंने अपनी शायरी के जरिए उर्दू जबान को फरोग दिया और इसे जिंदा रखा। मशहूर कलाम जिगर मुरादाबादी के कई अशार आज भी जुबाने जदे आम हैं। मसलन, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सबको मारा जिगर के शेरों ने, सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवाय याद। इनके ये अशआर इनके अंदाज़े बयान और फिक्र की गहराई को जाहिर करते हैं। तसनीफ जिगर मुरादाबादी के अहम शेरी मजमूए दर्ज ज़ैल हैं। दीवाने जिगर, इंतखाबे कलामे जिगर मुरादाबादी, शोलाए तूर, बाकियाते जिगर, आतिशे गुल, कुलियाते जिगर, इन मजमुओं में इनकी बेहतरीन गजलें शामिल हैं जो आज भी अदब का कीमती सरमाया है। एजाजात जिगर मुरादाबादी को इनकी अदबी खिदमात के एतराफ में कई एजाजात से नवाजा गया, जिनमें सबसे अहम साहित्य अकेडमी अवार्ड है जो इन्हें इनके शेरी मजमूए आतिशे गुल पर मिला। अदबी मुकाम व मर्तबा जिगर मुरादाबादी को उर्दू के अजीम गजल गो शोरा में शुमार किया जाता है। इनका कलाम आज भी इस तरह ताजा है जैसा कि इनके जमाने में था। इनकी शायरी में जो खलूस और सच्चाई है वो इन्हें दीगर शोरा से मुमताज बनाती है। जिगर को शराब की बहुत बुरी लत थी, मगर आखिरी दिनों में उन्होंने शराब को छोड़ दिया था और बहुत मजहबी हो गए थे। 1953 में उन्होंने हज किया। जिगर मुरादाबादी का नाम उर्दू की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इनकी शायरी न सिर्फ एक अदबी सरमाया है बल्कि एक जज्बाती और रूहानी वर्षा भी है जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर मुरादाबादी उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम है जो हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी शायरी मोहब्बत, खुलूस और इंसानी जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी है। उन्होंने गजल को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे नई बुलंदी तक पहुंचाया। जिगर की शायरी ने आने वाली नस्लों के शोरा पर गहरा असर डाला। उनका अंदाज आज भी मुशायरों में सुना और पसंद किया जाता है। जिगर नहायत खुश मिजाज और महफिल पसंद इंसान थे। वो महफिलों की जान समझे जाते थे। जिंदगी के आखिरी दौर में जिगर ने अपनी आदत में बेहतरी लाई और जिंदा रूहानियत की तरफ मायल हो गए। जिगर की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने गुर्बत, नशे की आदत और दीगर मसाइल का सामना किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को समझा लिया। जिगर मुरादाबादी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अलीगढ़ में गुजारे। वो 9 सितंबर 1960 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात उर्दू अदब के लिए एक बड़ा नुकसान थी।
1: ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे जिगर मुरादाबादी पर यह मालूमती तकरीर। मुकर्रर थी मोहतरमा गजल तबस्सुम, और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आप तक वो मौजूआत पहुँचाएँ कि जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा करता है, और हम भी चाहते हैं कि आप अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें, चाहे वो खतूत के ज़रिए हो या कोई और ज़रिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपसे आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।
2: जी शीबा, और ये सिलसिला आगे इंशाल्लाह हमेशा जारी रहे। लेकिन शीबा, एक अहम बात जो हम प्रोग्राम के शुरुआत में
1: जी
2: हमें
1: बिल्कुल
2: करना थी कि हज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है,
1: जी मारिया, आपने बहुत खूबसूरत बात कही,
2: और ये हमारी अपने सामीन से इस महीने में पहली मुलाकात है।
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: लगे हाथों हम अपने सामीन को हज के मुबारक मौके की, जो इस्लाम का एक बहुत ही अहम अरकान है, उसकी मुबारकबाद देते हैं। सभी सामीन को, सभी सुनने वालों को।

0: हज की बहुत बहुत मुबारकबाद, और फिर बकरीद आ रही है उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको ये खुशियाँ नसीब अता करवाए और हर मुसलमान हर मोमिन को हज की इस नेक सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
1: जी मारिया, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अपनी जानिब से भी तमाम सामईन को हज की मुबारकबाद पेश करती हूँ और कबूल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ज्यादा से सरफराज फरमाए। मारिया देखिए, अब घड़ी इशारा कर रही है इजाज़त लेने का। दिल तो नहीं चाहता कि हम सामईन से यूँ रुख्सत हो जाएं, लेकिन क्या करें,
0: वक्त का तकाजा है और वक्त ना किसी के लिए कभी रुका है और ना रुकेगा, और ये ज़रूरी भी है। जब ये वक्त आगे बढ़ेगा तो हम आगे आपको नए नए प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे, नई मुलाकातें होंगी, नई बातें होंगी, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। इसी दुआ के साथ मैं मारिया खुशनूद
1: और मैं शिवा नूर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए उन्वान नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
2: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले फरमाइश के साथ हमारे साथ हैं आप सभी। ग्राम नागर कोहरा, जिला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू, एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज बरेली से इमरान शेख, जीशान वारसी, अयूब खान साहब और मोहम्मद सोहेल काशीपुर से, रेशमा अंसारी, निशा और शकील अंसारी, रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से, साथ में हैं डुमराव बिहार से आसमा परवीन और वली भाई अंसारी, प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश डोकर, शाफ रोड राजकोट से, गुजरात से प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंक, शीतल, पूजा, कविता और अंश गौतम, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद अंसारी, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बाबी खान, शमा खान, मेकी खान, बुशरा खान, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गज़न खान, शमा परवीन, शमशद अली अज़म, गुलफ शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रज़िया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, चौक बाजार बासरी नगरी पीलीभीत से डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरी, परवीन, मोहम्मद, रिहान, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना, मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य, थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन, शीबा, इमरान, रेहान, इकराम, समीना, आसिफा, शबीना, पटियाले रोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर अल्लाह, शेख शमा परवीन, अलकम बेगम, मिर्जा नसरीन बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान, आरिश खान और इनके परिवार के सभी

सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कारवां में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। सो आप सभी की फरमाइश आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है आप सभी की। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, फलक फातिमा और बेबी अलिस्फा शेख। गंज जुंडवारा से मोहम्मद करीम जख्मी और मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन। गौरैया जालंधर से संदीप जाधव, भरत जाधव और प्रभात जाधव। बुलंदशहर से संगीत कुमार, वीणा वाणी कुमार और राधिका कुमारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्य भारती। गोरे जलंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और मेरठ बाईपास से राधिका और आरती कौर। वीरग गांव से प्रियंका शर्मा, अजीत शर्मा और करुणा शर्मा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीणा ढिंगरा, अनुश्री और देवश्री ढिंगरा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया और इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और जेल रोड बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती। खनक शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रथम सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरिन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज, सवारे और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म सोना चांदी में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी ने एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लाम उन्निशा, शकील अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद और डॉक्टर शाहबाज ने फरमाइश भेजी है संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से, जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतज़ार राही, शादाब राही, महताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, मछली गोदाम कैंदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु, ऋषभ सिंह, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा, इन्हीं के साथ हैं शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला महोबिया, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम, शमीम, अमन, ममता रानी, पूनम कुमारी, बच्चू शेख, चीना शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है हरे राम हरे कृष्णा फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी।

0: तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है।
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल, सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: अजी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ, ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा
0: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
6: बढ़िया।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
8: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा, और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
6: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: आह, पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And right now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा.
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है. यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से

0: प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
1: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
2: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
3: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
4: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
5: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के करकमलों से।
6: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
7: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही है शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धन पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका। राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। He walks to the podium.
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से

0: सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरीड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में
3: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
3: धन्यवाद श्रीमान।
4: और
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
5: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
4: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
6: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंट्रियो। ये
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह तथा रुस्तम जी की स्मृति का व्याख्यान 2026 का प्रसारण। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफ एम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजकर 5 मिनट हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी थाना निरीक्षक धनारी जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं कि मालवती पत्नी अरिंदा चौधरी दिनांक 28/4/2026 से लापता है। मालवती की उम्र 35 साल है। इनका कद 4 फुट 5 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य है। मालवती का रंग सांवला है। इनका चेहरा गोल है और इनके बाल काले हैं। किसी भी व्यक्ति को मालवती के बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है अथवा किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। गढ़ थाना धनारी जिला संभल आप इस फ़ोन नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं 9450441718। अगली सूचना हमें प्राप्त हुई है प्रभारी थाना निरीक्षक एचोड़ा कंभो जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं कि पूनम पत्नी पप्पू सिंह दिनांक 25 अप्रैल 2026 से ग्राम गोजनी से लापता है। पूनम की उम्र 32 वर्ष है। इनकी लंबाई 5 फुट है। शरीर की बनावट इनकी औसत है। पूनम का चेहरा गोल और इनका रंग गेहुआ है। पूनम की आँखें भूरी हैं। इन्होंने पीला सूट और पीली सलवार पहन रखी है। इसके साथ ही पूनम के साथ एक 4 माह का बच्चा भी है। इनके बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी मिलती है अथवा किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना एचोड़ा कंबो जिला संभल आप इस फ़ोन नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर है 6395162057। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

90. ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम बीप 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, दिन के 12:10 होने को हैं। कुछ ही देर में होगा कार्यक्रम गीत आपके

नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीत आपके नाम में। श्रोताओं, आज आपकी रेडियो दोस्त नेहा मैं आज आपकी रेडियो दोस्त नेहा आपको सुनवाऊंगी आपकी पसंद के गीत। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों को सुनवाना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत, तो आप हमें अभी ईमेल लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी वही जानी पहचानी गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। इस पर ईमेल करके आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ इस गीत से। इस गीत को लिया है हमने फिल्म जवानी दीवानी से। बोल लिखे हैं इस गीत के आनंद बख्शी साहब ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और सुनने की चाहत की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं प्रभा जाटव, डॉली, कबीर और साथ में है देव शंकर जमादार। जलंधर से हमारे श्रोता हैं कमल कुमार और भरत जाटव। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज और इनके साथ हैं शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और डॉक्टर अदीबा। कापस हेड़ा दिल्ली से हमारे श्रोता हैं फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल। जालंधर से संदीप जाटव, सुरेश। मेरठ कैंट से राधिका शाक और दिव्या अग्रवाल। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता हैं दीपक डिंगरा, अनुश्री, प्रमिला और साथ में हैं इनके देवश्री डिंगरा। मेरठ कैंट से सुरेश डोम, संदीप और साथ में आशु डोम। दादरी गेट भिवानी से हमारे श्रोता हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और साथ में हैं कुणाल मेहरा। श्रॉप रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली, सुरेश। गुजरात से प्रवीण राज सोनी, श्वेता सोनी। चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और साथ में हैं आशु जेटली। अगले हमारे श्रोता हैं सनाबत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म जवानी दीवानी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिल एक मंदिर से गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैंक मूड़त और साथ में हैं चेतन नहाटा। अगले हमारे श्रोता हमें फरमाइश करते हैं ऐसे गीत की मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़ और अनिल जैल, साथ में हैं दर्शन भाई। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और साथ में हैं पप्पी भाटिया। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार ढूंडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। बडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे श्रोता हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अगली फरमाइश हमें भेजी है इसी गीत की जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में है इनके नरगिस खातून। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबलू और साथ में है प्रियांशु साहू। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप लड्डू टुक टुक जाटव। उमरखेड़ से सिराज खान और साथ में है शवाना खान। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे श्रोता ने उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तिसु, अर्णमानंद, सत्यमानंद, बोहड़ा घाची पश्चिम बंगाल से। अगले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत लता की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत कार्यक्रम गीत आपके नाम में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा। तो अगली फरमाइश हमें की है गाइड फिल्म के गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत दिया है इस गीत को एसटी बर्मन ने, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और साथ में है अर्पिता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। गांधी समाधि रोड रामपुर से हमारे श्रोता हैं हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा, सुहान खान और साथ में है फरोज खां। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और साथ में है हिना कौसर। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुमार। अगली हमारी फरमाइश इसी गीत के भेजी है हमारे श्रोता ने ग्राम महेशपुर खे मुरादाबाद से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश, हमजा सिद्दीकी और साथ में है गुलशन साहिवा। शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख, राजेश, शिवसागर, इंद्राताई, खांडवी बुलडाड़ा से हमारे श्रोता हैं दीपावली रामधड़े, स्वराज रामधाड़े, थिल्लौरी दरायापुर से सुनैना पवन, साथ में है तनुज पवन, चंदर नगर सहारनपुर से प्रभा रानी डोम, आशा डोम, सोनाली, सुरेश पथिक मेरठ से उमाराज और साथ में है पवन उमा, इनके साथ ही हैं प्रभा रानी। हरियाणा से हमारे श्रोता हैं अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरके। सौराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं जूली जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम प्राची और साथ में हैं प्रवीण पुजारी। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली युवान और साथ में हैं इनके आर के राजा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा और साथ में हैं भाई सुच्चा सिंह पाठक। दत्तरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और साथ में इनके हैं विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म गाइड का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म से लिया है हमने ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। संगीत दिया है इस गीत को आनंद जी और कल्याण जी ने, बोल हैं आनंद बख्शी साहब के, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। बरवट बकाला बुलडाड़ा से नारायण हागे, कमला, दिव्या और जय हागे। सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्भ, बेबी बेबी गर्भी और साथ में हैं हिमाक्ष। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। गांव जाखोद से हमारे श्रोता हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, साथ में हैं कुमारी पूजा खटक। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। सिद्धार्थ नगर दयारपुर बाबली से गजाना नेले, नवदीप एले, विश्वदीप, अवंतिका एले। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे श्रोता हैं सुधाकर, राधे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित बयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरबत देशमुख और साथ में हैं इनके सानवी देशमुख। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और साथ में हैं आशीष विश्वकर्मा। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है इसी गीत की, राज पैलेस मऊनाथ मंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से ही हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकर और पिंकी, साथ में हैं इनके आर्यन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और साथ में हैं रिधान खुराना। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ही हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और साथ में हैं इनके बिट्टा बजाज। बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह, कुलदीप और साथ में हैं इनके सिमू एकम, दमन और अभिजीत। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 11 पुफाली जिला इबतपाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और साथ में है अर्पिता जी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म छाया से गीत को गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने, और सुनने की फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर, गंज, डुंडवारा, एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और साथ में है बेबी मुस्कान। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, रज्जाक मोहम्मद, समीन बेगम, इमरान खान, इरफान, जिशान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और साथ में हैं तनु करमकर। सरगुजा मेनपाट से विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और साथ में हैं डॉली थापा। जेल रोड झांसी से सुमित मोगा, देव, राधिका, कबीर मोगा। सहारनपुर जंक्शन से हमारे श्रोता हैं सुरेश पासवान और साथ में हैं आशा डुकर। जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी अजनबी, बेबी जोई अजनबी।

भी, और साथ में हैं इनके डॉली बेलदार छत्तीसगढ़ से, प्रभा रानी चंदर नगर महाराष्ट्र से, आशा जटोलिया और साथ में है देव शंकर जटोलिया। मधुबनी से हमारी श्रोता हैं ज्योति सिंह और नवीन सिंह, तारा सराय से केपी सिंह अघोरी और साथ में है भूलिया गुप्ता, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और आदित्य कसाना अपनी फरमाइश हमें लिख भेजते हैं जिला मुरादाबाद से, बीड शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि कारवा और बाला साहेब कारवा, कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुविया, निवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और इनके साथ हैं प्रांजल राय, बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और साथ में हैं इनके यश मंसूरी। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश मॉडल टाउन करनाल से, कुमार सुधीर, नूतन संदीप, गुलगंज जगमोहन और साथ में हैं इनके प्रतिभा, इशप्रीत और हरिपाल। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है इसी गीत की हमारे श्रोता ने, चंदन नगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार और साथ में हैं इनके संदीप मक्कड़। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और इनके साथ हैं खुशी गोस्वामी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म छाया का ये गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म काला पानी से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में इस गीत को संगीत दिया है एस डी बर्मन ने और गाने के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, साथ में हैं सतीश, अनेजा। शिवाजी नगर खंडवा से हमारे श्रोता हैं राजेश सेन और सुरेखा सेन। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी और साथ में हैं सीता और गीता। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फराना, फारिया ताहिरा और बुलंद शहर से हैं अब्बासी साहब। अगले हमारे श्रोता हैं मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई से जिला ललितपुर से संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, पूर्वी भारती, रूही, अनु, लपकुश और समस्त नामदेव परिवार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। अगले हमारे श्रोता हैं बाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और साथ में हैं पौरुष। अंबाला कैंट से हमारे श्रोता हैं सोनाली नारंग, पथिक वसीन और साथ में हैं कृषि। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से हमें इस गीत की फरमाइश लिख भेजते हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। अगले हमारे श्रोता इसी गीत की फरमाइश करते हैं हमें पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है इसी गीत की ग्राम ब पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हैं हमारे श्रोता रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा और साथ में हैं इनके वेद बाबू कठेरिया। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म का ये गीत लता, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: देखा दिल न तोड़ो
1: और छोड़ो हाथ छोड़ो
0: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: जी।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस बचपन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की युगल आवाज़ों में। बोल थे ओपी नैयर के और संगीत था ओपी नैयर का। और फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता थे ग्राम बपोस्ट हरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। कुंभार गली श्रीरामपुर से हमारे श्रोता थे अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले पूड़े से अजय सोनबने, करिश्मा, अविका और साथ में विशाखा। राज पैलेस मऊनाथ मंजन उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और माँ कार्तिकार्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ही हमारे श्रोता थे मुन्ना भाई सोनड़कर और पिंकी सोनड़कर, साथ में थे आर्यन। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया निसर और साजिद शाहिद इस गीत की फरमाइश करी थी इन सभी श्रोताओं ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आराधना से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने गुजरात के गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और साथ में जगदीश जौहरी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। बन वगैरह जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता योगेश सरवा आशा। और खमरिया छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, साथ में हैं राहुल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पिपरिया से हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। ग्राम पंचायत बठेना पाटना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और साथ में है प्रमला बांछेर। नेहरू चौक पैठर से हमारे श्रोता हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और साथ में है संगीता यादव। फातिमा कॉलोनी से श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और साथ में है गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सभीहा मुजावर, विखायल मुजावर और जैनम मुजावर। मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद, सुहेल, अनम, यशफ, सिकंदरा राव से मुवीन अब्बासी और इशरत परवीन। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, दिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और साथ में है मंजू राजवाड़े। राजधानी दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा, अंतरा सिंह और डोंटी लोहारा से शंकर देव, जटोलिया, प्रभा हगोड़िया, उमा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज और शवाना खान। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव। इन सभी श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं फिल्म आराधना का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध

0: 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी हमारी आज की प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर रहेगी नात और कव्वाली का समय, जिसमें आज कलाकार रहेंगे मुबारक हुसैन। दोपहर 1:30 पर रहेगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज रहेंगे 2000 के दशक के हिट फिल्मी गीत। हमारी द्वितीय सभा आरंभ होगी संध्या 5 आज शाम के साथ। शाम 5:15 पर रहेगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर चित्रपट संगीत में। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत होगा संध्या 6:20 पर। संध्या 7 रहेगा समय शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज कलाकार रहेंगी मुश्तरी बेगम, गायन होगा ठुमरी और बोल और उनके बोल होंगे। शाम 7:31 पर रहेगा सुगम संगीत का समय, जिसमें आज कलाकार रहेंगे श्याम मोहन और शुभ्रा चटर्जी। रात्रि 8 रहेगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं। रात्रि 9:30 पर रहेगा समय रूपक का। रात्रि 10 रहेगी आला, जिसमें आज कलाकार रहेंगे लेखराज राठौर और उनके साथी, और सदस्य रहेंगे आला के केदारनाथ, रूपलाल, कृष्णपाल और नथुलाल। रात्रि 10 रहेगा राग रंग, जिसमें आज कलाकार रहेंगे अशोक कुमार धींगरा, राग रहेगा यमन, तबला पर उनका साथ देंगे महफूज अली खान और सितार रहेगा अशोक कुमार धींगरा का। ये था विवरण हमारी आज की प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, एक जरूरी सूचना, हमारा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल अब व्हाट्सएप के द्वारा शुरू हो चुका है, जिस पर आप अपनी फरमाइशें हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन का 1:10 होने का है। कुछ ही पलों में होंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, ये वजीर आजम का विजन है।
1: हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के कयाम के जरिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तौहियात, तगयानूसी तस्वरात और अदम मसावात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीकों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनअती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने 1/5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकर्री की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेम्बरान की तकर्री की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: मर्दमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मर्दमशुमारी के लिए मुकर्र करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले मर्दमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मर्दमशुमारी के मकामात पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मर्दमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई से खुदगिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मर्दमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मर्दमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिंसों का कोड फराहम करना होगा, जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा, जिससे तलबा में मसावात और नज्म जब्त को फरोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात से दो चार है। जिला बांदा गुज़िश्ता रोज

0: के गर्म तरीन जिले से रहा। दीगर अजला में भी दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। हमारे नामा निगार की इतला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 8 सेकंड किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन का 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं नात और कवाली।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मुबारक हुसैन की गाई कुछ नात और कबाली। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का 1:30 हुआ है। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

वो छुट्टियों की मस्ती, वो हंसते हुए दिन, चाय की प्याली संग याद आते हैं आज भी वो पल छिन छिन। यादों की केतली आज फिर दिल में चढ़ी है, लगता है बचपन की कोई बात फिर करीब खड़ी है। इन्हीं मीठी यादों और प्यारे एहसासों के साथ नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी अपनी सखी श्रद्धा और लेकर आई हूं कार्यक्रम कुमकुम का ये बेहद खास अंक। सखियों कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और चाय के साथ इस खूबसूरत दिन का आनंद भी ले रही होंगी। भले ही सखियों बहुत तेज गर्मी है लेकिन हम चाय पीना नहीं भूलते। तो बताइए सखियों, आज आपकी चाय किसके साथ हुई? परिवार, दोस्तों या फिर खुद के साथ कुछ सुकून भरे पलों में? क्योंकि ये छोटी सी प्याली सिर्फ स्वाद नहीं देती बल्कि अपनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की याद भी दिला देती है। क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे साथ बने रहते हैं, कभी किसी खुशबू में, कभी किसी मौसम में, तो कभी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में। अब देखिए ना, सुबह की हल्की सी आलस भरी शुरुआत हो, काम के बीच थोड़ी सी थकान हो या फिर फुर्सत के दो पल, एक चीज है जो हर बार अपने आप याद आ जाती है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है हमारी चाय। और अब आप सोच रही होंगी कि आज आखिर चाय की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? तो आपको बता दें कि 21 मई यानी कल मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। एक ऐसा दिन जो सिर्फ चाय के स्वाद ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी यादों, अपनों और खूबसूरत पलों को भी खास बना देता है। और सखियों, चाय की प्याली हाथ में आते ही यादों का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है। फिर याद आने लगती हैं बचपन की वो गर्मियों की छुट्टियाँ, जब छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी खुशियाँ हुआ करती थी। वो छुट्टियाँ जिनमें ना समय देखने की जल्दी थी, ना मोबाइल की दुनिया में खो जाने की आदत, बस सुबह होते ही दोस्तों को आवाज़ लगाना, पूरा दिन खेलना, दोपहर में आम और ठंडी शिकंजी का आनंद लेना और शाम को छत पर परिवार के साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। और अगर छुट्टियों के बीच कोई त्यौहार आ जाए तो जैसे खुशियाँ और भी बढ़ जाती थी। घर में पकवानों की खुशबू, नई चीज़ों की तैयारी, रिश्तेदारों का आना जाना, पूरा घर जैसे हंसी से भर जाता था। और सच कहूँ तो सखियों, उस समय छुट्टियाँ सिर्फ बच्चों की नहीं होती थी, पूरा परिवार उन छुट्टियों को साथ मिलकर जीता था। लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है, आज बच्चों के हाथों में खिलौनों से ज़्यादा मोबाइल दिखाई देते हैं, बच्चे कार्टून और वीडियो में व्यस्त हो जाते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अक्सर इंटरनेट और फ़ोन की दुनिया में खोए रहते हैं। जबकि एक समय ऐसा भी था जब गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता था कॉमिक्स पढ़ना। चाचा चौधरी, नागराज, चंपक और नंदन जैसी किताबें बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एक कॉमिक्स खत्म होते ही दूसरी पढ़ने की जल्दी लगी रहती थी। उस समय छुट्टियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, कल्पनाओं, कहानियों और अपनेपन में बिताई जाती थी। तो क्यों ना इस बार छुट्टियों में थोड़ा बदलाव लाया जाए, बच्चों को फिर से किताबों के करीब लाया जाए। इसके लिए शायद हमें खुद में भी थोड़ा बदलाव करना होगा और वो बदलाव सबसे पहले मोबाइल से दूर रहकर बच्चों के साथ समय बिताकर, उनके साथ पुराने खेल खेल कर सकते हैं। जैसे हम बचपन में कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी खेलते थे, या पुराने फोटो एल्बम देखकर यादें ताज़ा करना, बच्चों को खेल खेल में कोई रेसिपी बनाना सिखाना या कोई ऐसी एक्टिविटी से जोड़ना जिसमें उनकी रुचि हो, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक, ड्राइंग या पेंटिंग हो। इसके साथ ही बच्चों को पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी सिखाइए, क्योंकि पेड़ पौधे सिर्फ घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाते सखियों, ये हमारी आने वाली जिंदगी और सांसों को भी सुरक्षित रखते हैं। बच्चे जब छोटी उम्र से प्रकृति के करीब रहना सीखते हैं तो उनके अंदर जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति प्यार अपने आप बढ़ने लगता है। और सखियों, इन छोटी छोटी अच्छी आदतों की शुरुआत अक्सर घर से ही होती है।
और इन आदतों को बच्चों के जीवन में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हम महिलाओं की, क्योंकि घर की महिलाएं ही तो वो खूबसूरत धागा होती हैं जो पूरे परिवार को प्यार, संस्कार और अपनेपन से जोड़कर रखती हैं। लेकिन इन सब के बीच में सखियों, गर्मियों की ये छुट्टियां घर में ही मत बिता देना। जरूरी नहीं कि हर बार किसी बड़ी जगह ही जाया जाए, कभी बच्चों को पार्क ले जाएं, कभी किसी प्राकृतिक जगह की सैर कर लें, तो कभी शाम को परिवार के साथ खुली हवा में थोड़ा समय बिताना भी मन को सुकून दे जाता है। ऐसे छोटे छोटे पल ही आगे चल के सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं, जहां बच्चे सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि परिवार के साथ समय बिताना भी सीखते हैं। तो सखियों, इस बार अब गर्मियों की छुट्टियों को हंसी, अपनापन और ढेर सारी प्यारी यादों से भर दीजिए। थोड़ा समय अपनों के नाम कीजिए और बच्चों के बचपन को मोबाइल नहीं, खूबसूरत लम्हों और रिश्तों की खुशबू से सजाइए, ताकि आने वाले समय में यही पल उनकी मुस्कान और यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। क्योंकि बचपन की असली खुशी खिलखिलाहट, अपनापन और छोटी छोटी शरारतों में ही छिपी होती है। जब घर में हंसी गूंजती है, दोस्तों की टोली साथ होती है और मन पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है, तो हर पल अपने आप एक मीठी धुन बन जाता है और अभी से मस्ती भरे एहसास को सुरों का साथ देते।

0: सखियों, गीत चाहे किसी भी रंग का हो, मस्ती से भरा, यादों से जुड़ा या भावनाओं को छू जाने वाला, संगीत हमेशा हमारे मन को सुकून देने का काम करता है। कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। सखियों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, सफलता, खुशियाँ, पहचान और बेहतर कल, लेकिन इन सब के बीच यदि मन शांत ना हो तो हर खुशी अधूरी सी लगने लगती है। और इस अधूरेपन को दूर करने का सबसे सुंदर मार्ग है अध्यात्म। जी हाँ, अध्यात्म हमें यही समझाता है कि असली संतुलन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। आखिर अध्यात्म हमारे जीवन को किस तरह नई दिशा देता है, इसे और विस्तार से सुनते हैं हमारी मेहमान सुप्रिया सक्सेना की भेंटवार्ता से। और बातचीत कर रही हैं हमारी बहन आकांक्षा सक्सेना।
1: जीवन में अध्यात्म का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि ये व्यक्ति को भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है। अध्यात्म हमें सही और गलत में अंतर समझाने की शक्ति देता है, कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य बनाए रखना सिखाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, कंपटीशन और असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहां अध्यात्म व्यक्ति को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास प्रदान करता है। कहा जाता है, जिस घर में संस्कार, सम्मान और सकारात्मक सोच होती है, वहां सुख और शांति अपने आप आ जाती है। ये अध्यात्म हमें सबसे पहले अपने परिवार से मिलता है, परिवार जहां हम सबको एकजुट रहना सिखाया जाता है। आज अध्यात्म इसी विषय पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं सुप्रिया सक्सेना जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आकांक्षा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: सुप्रिया जी, जैसे कि हम जानते हैं कि परिवार जो होता है वो एक साथ जुट होता है, किस तरह होता है और इसमें अध्यात्म का क्या महत्व रहता है?
2: देखिए, परिवार हमारी जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले हमारा परिवार होता है, जो हमें बाहरी दुनिया से पहचान कराता है हमारी, और हमें आस्तिक, नास्तिक, अच्छा, बुरा, सब चीजें हमें हमारे परिवार से ही सीखने के लिए मिलती हैं सबसे पहले। तो हम अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से सबसे ये चीज सीखते हैं और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि हाँ, हमें बाहरी जीवन में किस तरीके से लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा रहना है, ये हमारे संस्कारों में और स्वभाव में हमारे झलकता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्वभाव या हमारे आत्मज्ञान से हमें प्राप्त होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले के साथ पेश आए या कैसे उसके साथ व्यवहार करें।
1: जी सुप्रिया जी, आपके अनुसार अध्यात्म परिवार में शांति और सकारात्मक माहौल जो है वो किस तरह बनाया जा सकता है?
2: देखिए, आपसी प्रेम, अपने से बड़ों का सम्मान और एक दूसरे के प्रति जो है समर्पण की भावना, इससे हम एक दूसरे के लिए अपने परिवार में आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो व्यवहार हम करेंगे वही हमारे बच्चे व्यवहार करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस चीज का आत्म अवलोकन करना है कि हम अपने परिवार में अपने बड़ों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनके साथ रहते हैं, वही चीजें हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे।
1: जैसे कि सुप्रिया जी, हमने अक्सर ये देखा है कि जो आधुनिक जीवन शैली है इसके कारण परिवारों में आध्यात्मिकता जो हो रही है वो कम हो रही है
2: जी।
1: किस तरह इन्हें बढ़ाया जा सकता है या किस तरह की बच्चों को प्रेरणा दी जा सकती है?
2: देखिए, आजकल ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आधुनिक जीवन है उसमें हमारे, एक तो इतना फास्ट, इतना तेज हो गया है हमारा जीवन, बच्चों के पास टाइम नहीं है, और जो टाइम होता भी है तो बच्चे पहले बाहर जाते थे, बाहर खेलते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन अब क्या है, बच्चों का एक स्क्रीन टाइम और जो ये मोबाइल है इसने इतना बच्चों को चेंज कर दिया है एकदम से कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस नहीं है अब उनको, और कहीं ना कहीं शायद हम में भी वो पेशेंस कम होता जा रहा है, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आसानी से। लेकिन हाँ, हम लोगों को खुद को, जब हम अपने आप को अंतर मन से अच्छा बनाएंगे, सोचेंगे, अपने बारे में आत्मचिंतन करेंगे, तभी हम अपने बच्चों को भी वो चीज समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है। अगर हम ही ये चीज नहीं सीख पाएंगे कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के प्रति प्रेम रख रहे हैं, दया का भाव रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, जीव जंतु प्राणी कोई भी है अगर हम उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए अपने मन में दया रखते हैं, तो जब बच्चा गीली मिट्टी होता है, जो हम व्यवहार करेंगे वो बच्चा हमसे सीखेगा। मेरा मानना है कि पहले हमें अपने अंदर इस बदलाव को लाना होगा, तभी हम आज अपने बच्चे को आगे चल के ये शिक्षा दे पाएंगे और एक अच्छा इंसान बना पाएंगे।
1: जी हाँ, और कहा भी जाता है सुप्रिया जी कि अध्यात्म और सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप फोकस के साथ किसी भी एक कार्य को कर रहे हैं तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे।
2: जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हाँ, जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को अगर करना चाहते हैं तो हम पहले अपने आप को मेंटली उस चीज के लिए तैयार करेंगे, तभी हम उस चीज में सफलता हासिल कर पाएंगे। अब बच्चों को या कोई भी है, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बड़े हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तो हमें एक मोटिव लेके चलना होता है, एक उद्देश्य लेके चलना होता है। और जब हम उस उद्देश्य को लेके चलते हैं तो हम हर चीज हमारे लिए साइड हो जाती है। सबसे पहले हमारे फोकस उस चीज पे केंद्रित होना चाहिए कि हाँ नहीं, हमें ये वर्क करना है तो हमें पहले ये कंप्लीट करना है, और वही चीज हम फिर वो बच्चों को दे सकते हैं अपने।
1: जी, अध्यात्म एक तरीके का मेडिटेशन ही है कि आप कितना फोकस कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक किसी भी एक जगह पर रह करके एक ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि सुप्रिया जी, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो समय है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा
2: बिल्कुल,
1: है।
2: बिल्कुल,
1: तो इस पर जो अध्यात्म की शैली है वो काफी कम देखने को मिलती है। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, इस तरीके की चीजें। तो क्या बच्चों को सीख देनी चाहिए, क्या उनके माता पिता को सीख देनी चाहिए कि वे अध्यात्म की ओर अग्रसित हों और ये जो स्क्रीन टाइम है, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसे थोड़ा सा ठहराव लें।
2: देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के लिए खुद टाइम निकालना होगा। सबसे जरूरी है कि जब हम इन चीजों से दूर रहेंगे तब वो बच्चों को हम अपने दूर कर पाएंगे उन चीजों से। अगर हम खुद ही स्क्रीन टाइम अपना हर समय मोबाइल हाथ में ले रखा है, देख रहे है, और तो बच्चों को हम नहीं रोक सकते। बच्चे कहेंगे जब मम्मा आप देख सकती हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते, हम क्यों नहीं देखेंगे। और मैं मानती हूँ कि स्क्रीन टाइम बुरा नहीं है, बट एक लिमिट होनी चाहिए।
1: जी, एक लिमिट होनी चाहिए,
2: क्योंकि एक जब हर चीज का एक टाइम टेबल अगर हम बना के रखेंगे, रूटीन बना के रखेंगे, तो उसके हिसाब से वो बच्चा भी उस चीज को फॉलो करेगा। अगर हम ही अपने अंदर ये रूटीन, अब जैसे मेरा बेटा है, वो रात में सोता है, 8 साल का है, वो सोता है तो वो कहता है मम्मा फोन साइड में रख।
1: अरे वाह।
2: हाँ, तो उसको ये है कि मतलब अगर वो लेटा है तो फोन मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए, तो उसके पापा, मैं, हम दोनों फोन एक साइड रख देते हैं। हम फोन बिल्कुल, भले ही वो उसके सोने के बाद हम फोन ले लें, बट उस समय हम फोन छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो फिर वो कहेगा आगे चल के कि मम्मी मैं भी देखूंगा, आप भी तो देख रहे थे, मैंने मना किया, आपने देखा। तो इसलिए जैसा हम व्यवहार रखेंगे अपना बच्चे के सामने, वैसा ही बच्चा व्यवहार करेगा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि आपकी ये बात सुनकर हमारे सभी श्रोता साथी इस बात से जरूर सीख लेंगे कि मोबाइल का उपयोग करें लेकिन एक लिमिट में रह करके करें।
2: जी बिल्कुल सही, और उसमें एक, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी कि ये हम पे डिपेंड भी करता है कि हम बच्चे को क्या चीज दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा चाहे वो स्क्रीन पे देख रहा है, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी चीज पे, तो हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उसके भले ही हम साथ में ना बैठे, पर हमें ये पता होना चाहिए आसपास रहे कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। मैंने अपने बेटे को आदत डाली है, सुबह जब वो स्कूल के लिए उठता है तो हम सबसे पहले, वो अगर टीवी ऑन करता है तो वो हनुमान चालीसा लगाता है सबसे पहले। अगर जैसे संस्कार हम बच्चे में डालेंगे वैसे बच्चे बनते चले जाएंगे।
1: हाँ बस। अच्छा सुप्रिया जी, इसमें बहुत बड़ा एक सवाल ये भी होता है कि क्या अध्यात्म और पूजा एक ही चीज के अंतर्गत आते हैं या फिर ये दो अलग अलग चीजें हैं?
2: नहीं, मेरा मानना ये है कि अध्यात्म और पूजा एक तरीके से एक बहुत थिन लाइन होती है इनके बीच, बहुत पतली बारीक लाइन होती है कि पूजा पाठ जो होता है वो हम अपने मानसिक शांति के लिए करते हैं या हम अपने एक धर्म के हिसाब से करते हैं कि हमें धार्मिक हैं, हम उस तरीके से करते हैं, और वो बुरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कर्मकांडी होना और ईश्वर में फर्क करना, ये सब चीजें करना कि मेरे ईश्वर ये है, वो चीज गलत है. लेकिन आत्म ज्ञान जो है वो ये अपने आप को जानना, अपने अंतर मन को पहचानना, अपने स्वभाव से हमें ये जानना कि हम क्या सही है दुनिया में, क्या गलत है और हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें सही रास्ता पकड़ना है या गलत रास्ते. हम झूठ बोलेंगे आगे चल के हमारी जो आगे वाले आने वाली पीढ़ी है, हम उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप झूठ क्यों बोले.
1: जी सही बात.
2: चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, हम अगर बच्चे के सामने ये कहेंगे कि हाँ यस हमने गलती की सॉरी, तो वो बच्चा भी उस सॉरी को बोलना सीखेगा, उस चीज को सीखेगा.
1: एक समय पर आकर ये जो झूठ होता है ये एक मानसिक तनाव बनता
2: जाता
1: है और ये कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म से अलग कर देता
2: अलग कर देता है. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि देखिए झूठ, हम एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते.
1: जी
2: मेरा मानना है अगर हम कितनी भी बड़ी बात है अगर हम उसे एक बार में सच बोल देंगे फिर हमारा मन शांत हो जाता है.
1: जी
2: अब इसका परिणाम जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है. लेकिन क्या नाम है, हमने सच बोला, हमारा मन शांत है. अब हमने कोई बात छुपाने के लिए झूठ बोला, उसको फिर छुपाने के लिए हम और 2 झूठ बोलेंगे, तो वो एक तरीके से वो गलत पे गलत ही होता चला जाएगा. और इस तरीके से हम अपने परमात्मा से, आप हर चीज से दूर होते जाएंगे, एक गलत इंसान बनते चले जाएंगे बजाय एक सही इंसान बनने के.
1: जी
2: और उसमें हम दुखी भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे और मानसिक शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी.
1: और मानसिक शांति नहीं होगी तब हम अध्यात्म से दूर ही चले जाएंगे.
2: बिल्कुल.
1: और जहाँ अध्यात्म होता है वहाँ मन की शांति, रिश्तों में मिठास और जीवन में संतुलन आ ही जाता
2: है. बिल्कुल सही बात है. और परिवार में वो मिठास तभी रहेगी जब रिश्तों में एक पारदर्शिता रहेगी.
1: जी
2: कि कोई छुपाव नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी, तो रिश्ते अपने आप मजबूत रहेंगे आपस में.
1: कुल मिलाकर श्रोताओं, कहने का तात्पर्य और कहने का अंत सिर्फ इतना ही है कि अध्यात्म से जुड़ना सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि परिवार की भी शांति है. अंत में बस सुप्रिया जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे सभी श्रोता साथी इससे जरूर सीख लेंगे कि अध्यात्म का जीवन में कितना महत्व है. चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए. और सभी श्रोताओं से अंत में बस इतना ही कहेंगे कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं होता बल्कि प्रेम, संस्कार और आपसी विश्वास से जुड़ा रहता है. और जब इन रिश्तों में अध्यात्म जुड़ जाता है तो घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि शांति, अपनापन और खुशियों का मंदिर बन जाता है.
0: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान सुप्रिया सक्सेना की भेंट वार्ता और बातचीत कर रही थी हमारी बहन आकांक्षा सक्सेना. उम्मीद है कि ये भेंट वार्ता आपके मन को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने में सहायक रही होगी. लेकिन सखियों, जैसे मन को संतुलित और शांत रखना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही इस गर्म मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद

आवश्यक है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच छोटी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए बात करते हैं आज के हेल्थ टिप्स की, जिन्हें अपनाकर आप लू लगने से बच सकते हैं। सखियों, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि दोपहर के समय तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें और साथ ही शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे बोल देते हैं मम्मी हमें नहीं पीना सादा पानी, तो ऐसे में क्या करें कि बच्चों को ठंडक और पानी की सही मात्रा मिलती रहे। इसके लिए आप नींबू शिकंजी, छाछ, नारियल पानी, बेल का शरबत या घर में बने ताजे ठंडे ड्रिंक्स दे सकती हैं। ये शरीर को तरोताजा रखने के साथ साथ गर्मी और लू के असर से बचाने में भी मदद करते हैं। और अगर बात करें देसी और सेहतमंद शरबत की, तो सत्तू का नाम ज़रूर आता है। आजकल मार्केट में भी जौ और चने के सत्तू बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और घर में अगर आपको बनाना है तो भुने हुए चनों का छिलका निकालकर उन्हें पीस लें और एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लें। अब एक गिलास ठंडे पानी में 2 या 3 चम्मच सत्तू डालकर अच्छी तरह घोल लीजिए। इसमें थोड़ा काला नमक, भुना जीरा और नींबू मिलाकर सर्व कीजिए। अगर आपको मीठे सत्तू पसंद हैं तो अपने स्वाद के अनुसार चीनी या बूरा मिला सकती हैं। इससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और गर्मियों में भी ताजगी का एहसास बने रहेगा। सखियो, आमियों का मौसम है तो आम पन्ना बनाना मत भूलिएगा। आम पन्ना हमें लू लगने से बचाता है। और इन्हीं बातों के बीच हम दादी नानी की एक प्यारी सी सलाह कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा कि घर से निकलते वक्त थोड़ा सा प्याज साथ रखना या कच्चा प्याज सलाद में खाना इसे लू से बचाव में कारगर माना जाता है। साथ ही वे कहती थी कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, प्याज लगे तभी नहीं बल्कि उससे पहले ही। इसके अलावा हल्का और ताज़ा भोजन खाइए, ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें और बाहर से आने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी या एसी कूलर से बचें। दरअसल तेज गर्मी से आने के बाद शरीर का तापमान काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में अचानक बहुत ठंडी चीज़ें लेने से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सिर दर्द, घबराहट या तबीयत बिगड़ने जैसी परेशानी हो सकती है। इसे शरीर का तापमान सामान्य होने के बाद ही ठंडा पानी पिएं और ठंडी हवा लें। सखियों, थोड़ी सी लापरवाही और बहुत नुकसान दे सकती है। इसे थोड़ी सी सावधानी और पुराने अनुभवों से मिली सीख आपको गर्मियों में स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद कर सकती है। और अब बातों के सिलसिले को थोड़ा विराम देते हैं, क्योंकि सखियों घड़ी अब हमारी तरफ इशारा कर रही है कि समय हो चला है आप सभी सखियों से विदा लेने का। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम का आज का अंक कैसा लगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहती हैं तो पत्रों के माध्यम से हमें भेज सकती हैं। हमारा पता है कुमकुम कार्यक्रम द्वारा केंद्र, निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। इसी के साथ अपनी सखी श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी श्रद्धा जिंदल। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Justice Pratibha M. Singh and Justice Madhur Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic, West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
1: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahaul Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Centre Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The centre has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kierfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की. श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना. 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
2: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
6: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
7: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
2: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
8: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुनहरा दौर में। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो दोस्त नेहा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का हमारा सुनहरा दौर है जिसमें हम आज आपको सुनवाने जा रहे हैं 2000 के दशक के कुछ हिट और यादगार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है 2007 में आई फिल्म जब भी मैट से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने, बोल दिए हैं इस गीत को इशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जन्नत से। गीत को गाया है केके ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और बोल लिखे हैं इस गीत के सईद कादरी ने।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम सुनहरा दौर में हम आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के कुछ हिट फिल्मी गीत। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं 2008 में आई फिल्म सिंह इज किंग का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। बोल है मयूरपुरी के और संगीत दिया है इस गीत को प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत 2004 में आई फिल्म मर्डर से। गीत को गाया है आमिर जमाल ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और बोल लिखे हैं इस गीत के सैयद कादरी ने।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में आज आपने आनंद लिया 2000 के दशक के हिट फिल्मी गीतों का। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफ एम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराहन के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव पर अब संपन्न हो रही है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन पाएंगे। संध्या 5 बजे हमारी द्वितीय सभा मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर एक साथ आरंभ होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का
0: अच्छा
1: शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज।
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छीलू।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: ब्यूटीशियन हूँ दीदी।
0: ब्यूटीशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा
1: कहना चाहती हूँ जो लाइन आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी,
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
1: हाँ, जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए, तो हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारी विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी?
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी,
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी,
0: जी
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे बचपन, बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात
1: है। और उसके बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
1: और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा

0: गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
1: क्या बात है।
0: सबको का, हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
1: क्या बात है।
0: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी।
1: जी जी।
0: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
1: जी,
0: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
1: जी।
0: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा।
0: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना। जी
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात
1: बिल्कुल
0: करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है,
1: खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं,
0: खेल
1: मैं
0: पसंद के होते थे? अच्छा,
1: हाँ, मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है, थोड़ा हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें। हेलो
0: जी,
1: सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है। आप
1: है।
0: हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, किनारा
0: क्या बात है
1: फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
1: जी जी
0: आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: बिल्कुल। नाम

0: पहचान।
1: जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है
2: जी,
1: तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती

0: अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
1: जी।
0: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
1: जी
0: और मेरी सास का नाम सुमन है,
1: जी
0: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है,
1: जी जी
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये
1: जी
0: है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, वेद भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश रहना।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है। आज
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: जी
1: हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे
1: हाँ।
0: विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन
1: हाँ,
0: से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम,
0: जी
1: त्रिवेणी, छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा,
0: जी
1: प्रासंगिक कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है कि आप लिखती हैं। और तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: क्या
1: धन्यवाद।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उच पर
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी।

तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इस दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी, वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूं। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूं कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूं कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूं कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूं कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज चुके हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा अब मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंप्यूटर कार्यक्रम आज शाम।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसने हर मैदान को फतह किया है। जी हाँ, जो घर भी संभालती है और देश भी, जो सपनों को उड़ान देना जानती है। जी हाँ, आज हमारा विषय है आज की नारी। कभी कहा जाता था कि नारी सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित है, लेकिन आज की नारी हर बंधन तोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सैनिक है और देश की नेता भी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे फिर खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष की दुनिया हो या व्यापार का क्षेत्र। हर जगह नारी अपनी पहचान बना रही है, या यूं कहें कि आज की नारी आत्मनिर्भर है। वो अपने अधिकारों को जानती है और समाज में बदलाव लाने की ताकत भी रखती है।

विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रही है। वो माँ बनकर संस्कार देती है तो शिक्षिका बनकर ज्ञान भी देती है और एक नेता बनकर समाज को दिशा भी देती है। लेकिन आज भी समाज में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, भेदभाव, दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी समस्याएं। इनसे लड़ने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। नारी का सम्मान करना सिर्फ एक कर्तव्य मात्र नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है और इसके साथ आगे बढ़ता है हमारा देश। इसलिए हमें बेटियों को शिक्षा, सम्मान और सभी अवसर देने चाहिए। तो श्रोताओं, आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम नारी शक्ति का सम्मान करेंगे, उन्हें बराबरी का अधिकार देंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। और साथ ही हम सभी बेटियां खुद से ये वादा करेंगी कि हम भी कभी रुकेंगे नहीं, चाहे कितने भी संघर्ष करने पड़े, हर संघर्ष से आगे बढ़ेंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगी। तो इसी संदेश के साथ आज आपके रेडियो साथी सरस्वती सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनिए एक खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर कार्यक्रम आज शाम। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 होने को है। अब पेश है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपकी रेडियो साथी मेघा सक्सेना
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मेजबान फरहीन समद।
0: दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आज के सवाल का।
1: साथियों, हमारा आज का सवाल है, हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? सवाल एक बार फिर और ध्यान से सुन लीजिए। हमारा आज का सवाल है, हीरा किस तत्व का अपरूप होता है?
0: इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने हैं अपने जवाब। सही जवाब देने वाले सभी साथियों का नाम अनाउंस करेंगे हम प्रोग्राम के अंत में।
2: फरहीन, क्या तुमने सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना के बारे में सुना है?
3: सेल्फ एन्यूमरेशन, ये क्या है मेघा?
2: अगर इसे आसान शब्दों में कहें, यानी अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज कराना, यानी अब जनगणना या सर्वेक्षण के लिए सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर रहने की बजाय लोग खुद भी अपनी जानकारी डिजिटल माध्यम से भर सकते हैं।
3: वाह, यानी अब मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ चैटिंग या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे बल्कि देश के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
2: बिल्कुल फरीन, सबसे खास बात यह है कि इससे समय की बचत होती है और जानकारी भी जल्दी एकत्र हो जाती है।
3: बिल्कुल मेघा, जनगणना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होती है। इससे सरकार को पता चलता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ सड़क और कहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है।
2: सही कहा फरीन, और जब लोग खुद अपनी जानकारी भरते हैं तो डेटा अधिक सटीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
3: लेकिन मेघा, यहाँ एक जिम्मेदारी यह भी आती है कि हमें हमेशा सही और सच्ची जानकारी ही दर्ज करनी चाहिए।
2: हाँ फरीन, क्योंकि एक

0: छोटी सी गलत जानकारी भी भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
1: आज के युवा तकनीक से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, ऐसे में सेल्फ एन्यूमरेशन युवाओं को देश निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ता है।
0: यही तो असली डिजिटल जागरूकता है, तकनीक का सही और जिम्मेदारी के साथ उपयोग।
1: बिल्कुल मेघा, अगर आपको कभी स्वगणना या किसी डिजिटल सर्वेक्षण में भाग लेने का मौका मिले तो पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ जरूर हिस्सा लीजिएगा।
2: और साथियों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी के प्रोग्राम युववाणी में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: याद कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना जगाई, अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक भारत की नींव को मजबूत किया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी की, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है।
3: राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गाँव में हुआ था। बचपन से ही वे बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान के प्रति उनकी यही लगन आगे चलकर उन्हें समाज सुधार की राह पर ले गई।
0: साथियों, उस समय भारतीय समाज कई कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा समाज में प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस कुरीति के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। उनकी अथक मेहनत और जागरूकता के कारण 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा।
3: और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समाज में समानता की भी जोरदार वकालत की। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को सम्मान और शिक्षा ना मिले।
0: राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, जाति पाति और धार्मिक कट्टरता को खत्म करना था। उन्होंने लोगों को तर्क और शिक्षा के माध्यम से सोचने की प्रेरणा दी।
3: साथियों, वे सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि एक महान पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया।
0: राजा राम मोहन राय जी का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां शिक्षा, समानता और मानवता सर्वोपरि हो। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। 27 सितम्बर 1833 को इंग्लैंड में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी भारतीय समाज को प्रेरणा देते हैं।
3: आइए हम भी उनके आदर्शों को अपनाएं और समाज में जागरूकता, समानता और शिक्षा का दीप जलाएं, क्योंकि महान लोग सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता भी दिखाते हैं।
0: आइए साथियों, आप कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं।
3: हर सरसराती हवा, चहचहाते पंछी, रंग बिरंगे फूल, घने जंगल, बहती नदियाँ और धरती पर मौजूद हर जीव, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी जैव विविधता। और इसी अनमोल धरोहर को सहेजने और उसके महत्व को समझाने के लिए हर साल 22 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
0: साथियों, इस दिन का उद्देश्य सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की बात करना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि इंसान का जीवन भी पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। भोजन, पानी, दवाइयाँ, स्वच्छ हवा और संतुलित जलवायु, ये सब जैव विविधता की देन है।
3: साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस 1992 में जैव विविधता सम्मेलन को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर थीम रखी गई है और इस साल की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी स्थानीय स्तर पर कार्य वैश्विक प्रभाव के लिए। इसका संदेश है कि अगर हर व्यक्ति अपने आसपास की प्रकृति को बचाने की छोटी छोटी कोशिश करे तो पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मधुमक्खी ना रहे तो फूलों का परागण रुक जाएगा, अगर जंगल खत्म हो जाए तो बारिश का संतुलन बिगड़ जाएगा, अगर नदियाँ प्रदूषित हो जाए तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। यानी प्रकृति का हर जीव और हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही है जैव विविधता की असली ताकत।
3: आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कई जीव जंतुओं का विलुप्त होना। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर अनेक प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही हैं, जो आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा है।
0: लेकिन साथियों, अभी भी उम्मीद है। जब लोग पेड़ लगाते हैं, जल संरक्षण करते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, तब प्रकृति मुस्कुराती है। दोस्तों, जैव विविधता सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। आपके घर का एक छोटा सा बगीचा, खेतों में उगने वाली फसलें, आसमान में उड़ती चिड़ियां और आसपास दिखने वाले पेड़ भी इसी का हिस्सा हैं।
3: तो आइए साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ पौधे बचाएंगे, पानी की कदर करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे।
0: क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
4: आइए साथियों, आप सुनते हैं आज की विशेष वार्ता जैव विविधता का महत्व के विषय पर, जिसमें आज हमारी वार्ताकार हैं पारुल सक्सेना।
5: प्रकृति की गोद में हर जीव का स्थान है। जैव विविधता ही धरती की असली शान है। जैव विविधता ही धरती की असली शान है। श्रोताओं, 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। सर्वप्रथम विषय पर विस्तृत जानकारी लेने से पहले हम जैव विविधता के शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, पहला जैव और दूसरा विविधता। जैव का अर्थ है जीवन और विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार यानी भिन्नताएं। यानी इन्हें जोड़ा जाए तो जैव विविधता का संक्षिप्त में अर्थ हुआ जीवन की विविधता, यानी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता और उनके बीच के पारिस्थितिक संबंधों को हम जैव विविधता कहते हैं। यह केवल प्रजातियों की संख्या का सूचक नहीं है, बल्कि जीवों के बीच अंतर संबंधों और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को भी अभिव्यक्त करना है। जैव विविधता पृथ्वी के जीवन समर्थन तंत्र की आधारशिला है और मानव सभ्यता का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। इसलिए कहा भी गया है, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं धरती के आधार। पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं धरती के आधार, इनके बिना अधूरा है मानव का संसार, मानव का संसार। श्रोताओं, अब हम जानेंगे कि आखिर जैव विविधता दिवस की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम इसे मनाने की घोषणा किसने की और ये दिन हमारे लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैव विविधता कोई एक बार में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह विकासवादी प्रक्रियाओं, समय के साथ होने वाले जेनेटिक बदलावों और बदलते पर्यावरणीय स्थितियों के बीच एक सतत संतुलन है। यानी जैव विविधता की उत्पत्ति पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जो लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह समय के साथ प्रजातियों में बदलाव, नई प्रजातियों के बनने और अनुकूलन यानी स्पीशिएशन और एडेप्टेशन का परिणाम है। अनेकता में एकता ही प्रकृति का श्रृंगार है। जैव विविधता ही खुशहाल जीवन का आधार है। जैव विविधता ही खुशहाल जीवन का आधार है। श्रोताओं, अब हम जानेंगे कि जैव विविधता किन किन प्रक्रियाओं द्वारा अस्तित्व में आई है। पहला है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। जब जीव अलग अलग वातावरण जैसे रेगिस्तान, समुद्र, जंगल आदि में रहने के लिए खुद को बदलते हैं, तो वे धीरे धीरे प्रजातियों में विकसित हो जाते हैं। दूसरा है भूवैज्ञानिक परिवर्तन यानी जियोलॉजिकल चेंजेस। पृथ्वी की सतह में बदलाव जैसे महाद्वीपों का खिसकना, पहाड़ों का बनना और जलवायु में बदलाव ने प्रजातियों को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग कर दिया, जिससे उनमें विविधता आ गई। तीसरा है पर्यावरणीय विविधता यानी एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी। यह ऐसा क्षेत्र है जहां गर्म

जलवायु और अधिक विविधता पाई जाती है, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के पास है। और चौथा है सामूहिक विलुप्तिकरण और पुनरुत्पादन, यानी मास एक्सटिंक्शन एंड रीजनरेशन। पृथ्वी के इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हुईं, लेकिन उसके बाद बची हुई प्रजातियों ने नए वातावरण में खुद को ढाला और फिर से विविधता का विस्तार हुआ। यो विल्सन ने कहा है, हमें जैव विविधता के हर अंश को अमूल्य बनाकर संरक्षित करना चाहिए, साथ ही साथ इसका उपयोग भी करना चाहिए और सीखना चाहिए, तथा मानवता के लिए इसके महत्व को भी समझना चाहिए। इसलिए हम जैव विविधता के तीन मुख्य स्तरों के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रजातियों की विविधता, यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी। यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। इसमें पौधे, जानवर, फंगस और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। दूसरी है आनुवांशिक विविधता, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले आनुवांशिक अंतर या विविधता को दर्शाता है, जैसे एक ही प्रकार के चावल की किस्में जो अलग अलग जलवायु और परिस्थितियों में उगाई जाती हैं। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को दर्शाता है, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान, महासागर आदि। इसलिए कहा भी गया है कि मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा जैव विविधता ही है हर बीमारी की दवा। श्रोताओं, अब हम जानेंगे जैव विविधता हानि के क्या क्या कारण हैं। पहला है पर्यावरण का विनाश और विखंडन। पर्यावासों का विनाश जैव विविधता हानि का सबसे बड़ा कारण है। वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। साथ ही सड़कों और बस्तियों के निर्माण से आवास खंडित हो जाते हैं, जिससे अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। दूसरा, आमतौर पर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, जिसमें अत्यधिक शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार और अनियंत्रित मत्स्यन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यह प्रवृत्ति पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सबसे मुख्य कारण है प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन। जलवायु और मृदा में रासायनिक उर्वरकों, औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक के मिलने से जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नष्ट हो रही हैं, क्योंकि कहा भी गया है आने वाली पीढ़ी को अगर देना है उपहार तो बचाओ जैव विविधता और ये संसार, तो बचाओ जैव विविधता और ये संसार। श्रोताओं, अब हम जैव विविधता के महत्व के बारे में जानेंगे। यह विभिन्न जीवों के बीच संतुलन बनाकर रखती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर पाते हैं। दूसरा है भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा। हमारे भोजन के लिए फसलों, जंगली खाद्य स्रोतों और जलीय संसाधनों का प्रमुख स्रोत है, साथ ही कई महत्वपूर्ण दवाएं भी इससे प्राप्त होती हैं। तीसरा है जलवायु परिवर्तन से रक्षा। जैव विविधता कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु को नियंत्रित करने में 37% तक योगदान देती है। क्या आप जानते हैं जैव विविधता का आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य है? जैसे विश्व की आधी से अधिक GDP प्रकृति पर निर्भर है, विभिन्न संस्कृतियों में जीवों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, तथा वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। IUCN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका गठन 2004 में हुआ था, इसके अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन यानी 15 लाख प्रजातियां हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी आकलित प्रजातियों में से 70% से अधिक जंतु प्रजातियां पाई गई हैं। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक प्रजाति विविधता 8.1% है। क्या आप जानते हैं विश्व में कुल प्रजातियों का 70% भाग जंतु प्रजातियां व 22% भाग पादप प्रजातियां और शेष 5% यानी अन्य जीव जंतु है। इसी कारण महाविविधता वाले 12 देशों में भारत शामिल है। रॉबर्ट मे के आकलन को यदि माना जाए तो भारत में अभी 1 लाख से ज्यादा पादप, 3 लाख से ज्यादा जंतु प्रजातियां खोजी गई हैं। श्रोताओं, अब हम जानेंगे कि जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पहला है जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यह संकल्पना नॉर्मन मेयर ने 1988 में दी थी। इसमें इन क्षेत्रों को रखा गया है जिनमें अत्यधिक जातीय समृद्धि पाई जाती है। ये प्रजातियां अन्य स्थानों पर उपस्थित नहीं होती हैं। भारत में कुल 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें पहला है हिमालय। इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र शामिल है। दूसरा है पश्चिमी घाट। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समांतर

0: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई है। तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और अंडमान द्वीप समूह है। चौथा है सुंडालैंड। भारत का केवल निकोबार द्वीप समूह इस विशाल हॉटस्पॉट का हिस्सा है। श्रोताओं, सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई हैं, जैसे साइट्स, यानी जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसकी रूपरेखा 1973 में अमेरिका द्वारा प्रस्तुत की गई। 80 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद ये संख्या अस्तित्व में आई। यह विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था मानी जाती है। दूसरा है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी ने 1969 में रेड डेटा बुक में दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध कर वर्णन किया है। इसलिए जैव विविधता का जब होगा संरक्षण, तभी होगा सुरक्षित मानव जीवन। जैव विविधता केवल वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवित रहने की शर्त भी है। महात्मा गांधी ने कहा है, प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए साधन है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। वन संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्य, जैविक खेती को बढ़ावा देना और जैसे प्रदूषण नियंत्रण इसके महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाना, यानी क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, और सरकार द्वारा कड़े कानून बनाना भी आवश्यक है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक शिकार तथा वनों की कटाई से बचना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण न केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि ये मानव जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण का आनंद ले सके। जैव विविधता को बचाना केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं, बल्कि खुद को बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि एक विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ही लचीला और स्वस्थ होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति का मत करो शोषण, मिलकर करो जैव विविधता का पोषण।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप एक वार्ता जिसका विषय था जैव विविधता का महत्व, जिसमें हमारी वार्ताकार थी पारुल सक्सेना। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ साथ यूँ आइए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और चलते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट साइंस नामा की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे साइंस नामा के पहले सब सेगमेंट विज्ञान हस्ती में वेंकट रमन राधा कृष्णन जी को।
1: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान वैज्ञानिक की जिन्होंने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और एक ऐसा नाम जिसने भारतीय विज्ञान को दुनिया के मंच पर नई पहचान दिलाई है। आज हम बात कर रहे हैं वेंकट रमन राधा कृष्णन जी की।
0: साथियों, वेंकट रमन राधा कृष्ण का जन्म 18 मई 1929 को तमिलनाडु में हुआ था। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान अपने अद्भुत शोध और मेहनत से बनाई।
1: साथियों, बचपन से ही उनकी रुचि विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में थी। उन्होंने खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। खास तौर पर रेडियो एस्ट्रोनॉमी में उनका योगदान बेहद सराहनीय माना जाता है।
0: उन्होंने पल्सर यानी अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों पर गहन शोध किया। उनके अध्ययन से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की कई अनसुलझी पहेलियों को समझने में मदद मिली। यही कारण है कि उन्हें दुनिया के प्रमुख खगोल वैज्ञानिकों में गिना जाता है।
1: वेंकट रमन राधा कृष्णन जी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित कई देशों में वैज्ञानिक संस्थानों के साथ काम किया। वे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक भी रहे। उनके नेतृत्व में इस संस्थान ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की।
0: साथ ही उनकी सबसे खास बात ये थी कि वे विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी विज्ञान को समझे, सवाल पूछे और नई खोजों की ओर बढ़े।
1: उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जिज्ञासा, मेहनत और ज्ञान की खोज इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 3 मार्च 2011 को उनका निधन हो गया, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
0: आइए साथियों, हम भी विज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, नए सवाल पूछें और ज्ञान की रोशनी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो लोग तारों को समझने की कोशिश करते हैं, वे दुनिया को नई दिशा देते हैं।
1: दोस्तों, विज्ञान हस्ती सेगमेंट अब यही समाप्त होता है।
2: दोस्तों, चलिए अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब सेगमेंट, आइए जानते हैं कि और, जिसमें आज हम जानेंगे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है।
1: तपती दोपहर, सूखी धरती और आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान, और फिर अचानक काले बादलों की दस्तक, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की पहली बूंदे। साथियों, यही है भारतीय मानसून का जादू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती कैसे है? तो चलिए आज इसी रोचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है।
0: दोस्तों, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मौसम का बदलना। भारत में मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जीवन की धड़कन माना जाता है। खेती, पानी और हमारे रोजमर्रा के जीवन का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। गर्मियों के मौसम में सूर्य की तेज किरणों के कारण भारत की धरती बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, खासकर उत्तर भारत का क्षेत्र। दूसरी ओर हिंद महासागर का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। जब धरती ज्यादा गर्म होती है तो वहाँ कम वायुदाब यानी लो प्रेशर बन जाता है। वहीं समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब बना रहता है। प्रकृति का नियम है कि हवा हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है।
1: और साथियों, इसी कारण समुद्र से नमी से भरी हवाएं भारत की ओर बढ़ने लगती हैं। यही हवाएं आगे चलकर मानसूनी हवाएं कहलाती हैं।
0: भारतीय मानसून मुख्य रूप से दो शाखाओं में बंट जाता है, पहली अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाटों से टकराकर भारी वर्षा करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व भारत और गंगा मैदानों में बारिश लाती है।
1: साथियों, मानसून को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, समुद्री तापमान, हवा की दिशा और पृथ्वी का घूर्णन। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हिमालय ना होता तो शायद मानसून का स्वरूप बिल्कुल अलग होता।
0: मानसून केवल मौसम की घटना नहीं बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति से भी जुड़ा होता है। अच्छी बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, नदियां भर जाती हैं और प्रकृति हरियाली से सज उठती है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का चक्र प्रभावित हो रहा है।

0: कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखे की स्थिति बन रही है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब बारिश की बूंदें आपके चेहरे को छुएं, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत वैज्ञानिक चक्र है जो धरती पर जीवन को बनाए रखता है, क्योंकि मानसून सिर्फ मौसम नहीं भारत की सांसों की लय है।
0: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट, आइए जानते हैं।
2: और साथियों, अब बढ़ते हैं साइंस नामा के लास्ट सब सेगमेंट साइंस न्यूज़ की ओर, जिसमें हमारी आज की पहली न्यूज़ है अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष यानिकी संस्थान यानी AIAA ने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है। चंद्रमा ने दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने और अंतरिक्ष विज्ञान में नई समझ जोड़ने के लिए यह पुरस्कार वॉशिंगटन DC में प्रदान किया गया।
0: दोस्तों, इसी क्रम में हमारी अगली न्यूज़ है, वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस में दिखने वाली दुर्लभ नीली चमक LFBOT का अध्ययन पूरा किया है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि ये तीव्र और चमकीले विस्फोट वास्तव में अंतरिक्ष में ब्लैक होल और तारों के बीच होने वाली हिंसक टक्कर को परिणाम हो सकता है।
2: साइंस न्यूज़ की हमारी तीसरी न्यूज़ है स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। WHO ने इबोला वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। इबोला के 500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले सामने आने और 130 से अधिक लोगों की मौत के बाद ये अलर्ट जारी किया है।
0: हमारी अगली न्यूज़ है, नासा ने चेतावनी दी थी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आकाशीय चट्टान यानी एस्टेरॉयड 2026 JH2 पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाली है। यह एस्टेरॉयड चांद की दूरी से भी 4 गुना कम दूरी से गुजरा है।
2: और साथियों, ये थी हमारी आज की साइंस न्यूज़।

0: और दोस्तों अब वक्त है प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो दोस्तों हमारा आज का सवाल था, हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? और इसका सही जवाब है
1: कार्बन। आइए जानते हैं कि किन श्रोता साथियों ने हमें सही जवाब दिए हैं। सुदर्शन शाह, उत्तम सिंह, नजमुल हुडा, जॉन डी कैस्ट्रो, नंद कुमार, दीपेश वर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, नानक खन्ना, पुंजाजी नावकर, धर्मेंद्र छिपा, दिनेश वर्मा, मुजफ्फर अली, राहुल मनवर, रियासत हुसैन, विठल सुरोशे, नवी हसन अब्बासी, सुरेश खुराना, रामकुमार रेवार, विजय सिंह, बी एल धाकड़, दिग्दर्शन गौंड, विनोद मूणत, श्री कृष्ण बाठे, जाकिर मंसूरी, मसरूर हसन, गुरमीत सिंह, विमल सक्सेना, फागुराम यादव, बी कमल, जगदीश धाकड़, जयपाल यादव, उत्तम कुमार, बलवंत कुमार, तुलसी मस्कील,
0: संजय ढींगिया, चौधरी राजवीर सिंह, देवशंकर तमूरिया, अनिल बी गोटके, राजू मिगलानी, हिरामणि वर्मा, शाहजी बोड़खे, इरशाद अहमद अंसारी, निसार सलमानी, सिद्धार्थ गोंडाने, हाजी गफ्फार खान, राधेश्याम पांडे, सुनील पाठक, सुरेश गगनेजा, विजय सुरलकर, नितेश कुमार देवांगन, गजनन येले धरियापुर भाबली, अरविंद कुमार, शकील अहमद इदरीसी, रवि रस्तोगी, धीरज भाई रबारी, अजीत कसाना, आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, शहरून नूर अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, शेख जियाउर रहमान, एमडी यासीन अंजान, प्रवीण चौहान,

हफीज़, मोहम्मद हफीज़ुल रहमान बकर, मिसबाह शमसी, ये थे हमारे उन सभी साथियों के नाम जिन्होंने हमें लिख भेजे हैं आज के सही जवाब। साथियों, बढ़ेंगे प्रोग्राम की समाप्ति की ओर इस प्यारे से गीत को सुनते सुनते।

0: साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आइए, युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारा पिन नंबर है 244901।
1: और हमारे जो श्रोता साथी हमें अपना फीडबैक ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, वे हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारी ईमेल है patramila@rampur.gmail.com।
0: आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9410087876। और इसी के साथ दीजिए अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति अपनी रेडियो मेज़बान फरहीन समद
0: और मेघा सक्सेना को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी।

0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं।

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना अजीम नगर जिला रामपुर हमें सूचित करते हैं कि मुस्कान पुत्री शमशाद निवासी ग्राम खेड़ा टांडा थाना अजीम नगर रामपुर विगत 30 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा और कद 5 फुट है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना अजीम नगर जिला रामपुर, मोबाइल नंबर 9454404157। सूचना समाप्त हुई।

खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और आवश्यक सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि नेहा पुत्री नबीजान निवासी मोहल्ला सादक सराय थाना हजरत नगर गढ़ी संभल विगत 29 अप्रैल 2026

इसी क्रम में अंतिम सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि अर्जी पत्नी जीशान निवासी ग्राम जनेटा थाना बनियाठेर संभल विगत 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष, कद 4 फुट 3 इंच, रंग गोरा और चेहरा औसत है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जिला संभल, मोबाइल नंबर 9412510731। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सीआईडी से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी।

अभी आप ये नगमा सुन रहे थे फिल्म सीआईडी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कारवां से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत, कार्यक्रम था चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 होने को हैं। कृषि श्रोताओं के लिए अब प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो हेमपाल भैया, राम राम।
1: राम राम प्रवीण भैया, और सुनाओ घर परिवार के रहने सहने कैसे हैं?
0: भैया देखो, गर्मी तो आप देख रहे हो खूब पड़ रही है, और ऐसे में काम बहुत कम ही रहो, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो भैया कोई भी दुर्घटना घट सकती है।
1: बिल्कुल भैया, तो हम अपने किसान साथियों से जय कहना चाहेंगे कि ऐसी गर्मी में अपनों और अपने बच्चन को, पशु उनको सबको ध्यान रखें, पानी को खूब पिएं, खेत पर जाएं तो सुबह को जल्दी चले जाएं, और कोशिश करें कि 9:30-10 बजे तक आप खेत पर से घर आ जाएं, और शाम को 3 बजे के बाद ही आप खेत पर जाने की कोशिश करें।
0: और भैया दोपहर से जो है भारी काम ना करें, सुबह सुबह ही भारी काम करें, जैसे अगर नई खुदाई का काम चल रहा है तो वो सुबह से ही करें, ज़्यादा बढ़िया है। और भैया जो हमारी गन्ना की सिंचाई है ना, वो भी समय समय पर करते रहें, क्योंकि इस समय गर्मी देख रहे हो आप काफ़ी पड़ रही है, और अगर दोपहर में देखेंगे हम गन्ना को ना तो ऐंठ सो रहा हुए।
1: बिल्कुल भैया, देखो फसल अच्छी हो जाके लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, समय समय पर देनो जाके, संग संग बीज भी बहुत मायने रखता है फसल के लिए।
0: तो भैया देखो, हम तो किसान साथियों से यही कहेंगे कि इन चीज़ों को ध्यान रखें, पशुओं को भी भैया दिन में 2 बार नभावें, पानी समय समय पर पिलाते रहें, जिससे कि हमारे किसान साथी और हमारे जो पशु हैं दोनों स्वस्थ रह सकें।
1: और भैया देखो, जो हमने अभी बात करी ना कि बीज और सिंचाई दोनों तो मायने रखते ही रखते हैं, जाके संग संग और चीज़ें जो है अपने खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और भैया देखो, इन दिनों जो हमारा मई को महीना हो, जाके हम शुरुआत से ही अपने कार्यक्रम में हमने कुछ बदलाव करे हैं।
0: तो भैया देखो, बदलाव की बात करें तो जो मई को महीना शुरू करूँ ना, बाग में पहले बुधवार को सफल कृषक से हम करेंगे बातचीत, अपने किसान साथी को सुनवाएंगे, और ऐसे ही दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई बातचीत सुनवाई जाएगी, और तीसरे बुधवार को कृषि गोष्ठी हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे, और चौथे शुक्रवार बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप से करी गई बातचीत हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे।
1: इसी तरह से किसान साथियों, अगर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की बात करें तो पहले और
0: तीसरे
1: गुरुवार को आकाशवाणी गाँव में क्षेत्र संकलित कार्यक्रम पर आधारित जो कार्यक्रम होते हैं जो आप तक पहुंचा जाएगा, और दूसरे और चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलिहान कार्यक्रम आप तक पहुंचा जाएगा, और साथियों अगर पांचवां गुरुवार पड़ता है तो उस दिन भी आकाशवाणी गांव में क्षेत्र संकलित कार्यक्रम जो कि पंचायत पर विशेष कार्यक्रम आप तक पहुँचाया जाता है वो भी पहुँचा जाएगा।
0: भैया शुक्रवार की बात करें तो पहले और तीसरे शुक्रवार को फार्मेसी लोक संगीत को कार्यक्रम हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे, और दूसरे और चौथे शुक्रवार को कृषि संघ का समाधान से जो जुड़ी समस्याएं होंगी उनका समाधान करो जाएगा।

0: और अगर भैया पांचवा शुक्रवार पड़ते तो लोक मंजरी कार्यक्रम हम अपने किसान साथियों को फरमाइशी सुनवाएंगे।
1: तो भैया आज भी दिन है शुक्रवार को, तो आज का है?
0: आज भैया देखो हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे कृषि संघ का समाधान, जो कि कृषि संबंधी समस्या व उनसे जुड़े समाधान उनको बताए जाएंगे। तो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0595-232-4326 पे, अगर हमें पे फ़ोन करेंगे तो उनकी जो समस्या होगी उसका समाधान करो जाएगा।
1: जाके अलावा किसान साथियों आप अपनी समस्याओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9410088786, यानी 9487786। इस पर आप हमें पशुओं से संबंधित और कृषि से संबंधित जो भी आप समस्याएं हमसे पूछेंगे हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें साथियों इसी समय आप फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
0: और भैया इसके अलावा हमारे जो किसान साथी पढ़े लिखे हैं और वे ईमेल चलाते हैं तो वे पत्र मिला airrampur@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं और अपनी समस्या लिख भेज सकते हैं। उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने को पूर्व प्रयास करो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, तो हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पे आप जो है जुड़ के आप अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा पत्राचार भी कर सकते हैं हमारे किसान साथी। पत्राचार के लिए कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901 पे पत्र भेजकर भी अपनी समस्या को समाधान करा सकते हैं।
1: तो साथियों आपकी फ़ोन कॉल्स को और आपके पत्रों को इंतजार करेंगे, उससे पहले हम आपसे कुछ और बातें कर लेते हैं। और भैया देखो आज दिन शुक्रवार तो है ही, साथ ही साथ आज दिन 22 तारीख भी है।
0: हाँ, और आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। और जैव दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनको महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए
1: और इनकी रक्षा करना चाहिए। क्योंकि साथियों अगर हम जैव विविधता को समझ जाएंगे और उनकी हम रक्षा करेंगे तो वे हमारी भी रक्षा करेंगे।
0: जैसे भैया अगर आप बात करें ना, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हुई पहले कितनी होती हैं, विलुप्त ही गई हैं, अब कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। और इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में हमारे खेती बाड़ी को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग जब स्प्रे करते हैं या दवाइयाँ डालते हैं या हम जो बीजन पर लगी दवाइयाँ जो हम खेत में बोते हैं ना, तो वो चुक चुक के इनके जुगे प्रजातियाँ लुप्त ही गई हैं।
1: और जाके संग संग जैसे मधुमक्खी पहले कितनी होती, पता चलती है संजा के टाइम बाहर लेटे हैं और मधुमक्खी के छत के ऊपर से उड़ के जा रही हैं और आज भी देखने को ही ना मिलती हैं। तो जिससे जो हमारी फसल है उसके परागण की क्रिया सही तरीके से ना हो पाती है, जो भी एक कम पैदावार को एक कारण है।
0: और इसके अलावा हमें पेड़ पौधों की भी जो प्रजातियाँ हैं उनको विलुप्त होने से बचाने हैं। जैसे आपने देखा होगा ना पहले जो है बबूल कितना होता अपने एरिया में,
1: पाखड़ होती और जब वो पैदल जाते हैं ना स्कूल, हम तो स्कूल पैदल जाते हैं तो पाखड़ नीचे बैठ जाते, बबूल नीचे बैठ जाते, आज तो भी देखने को ना मिलता।
0: ऐसे ही नीम के पौधा भी बहुत कम ही गए हैं, क्योंकि पहले जो है नीम से हम दतौन करते, कोई भैया किसी प्रकार की हम पेस्ट जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ना मंजन इस्तेमाल करते हैं और हमारे दांत जो है बहुत ही चमकते। लेकिन अब अगर हम देखें तो दातून करने के लिए नीम को पेड़ों जल्दी गांव में ना मिल पाते।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप जैव विविधता को समझें और उसकी रक्षा करें।
0: इसके भैया हम लाभ भी अपने किसान साथियों को बता देते हैं। एक तो भोजन, औषधि और ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें पौधों से, साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन बनो रहता है। कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हमें करना चाहिए और देखो वनों की कटाई से हमें बचना चाहिए। इससे भैया प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा ही हुए और अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि भैया जे जो है लाभ कम और नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं।
1: तो भैया बहनों आज जैव विविधता हमारे जीवन को आधार से हुई और यदि हम आज हम नए समय रहते ना चेते, यानी समय रहते हमने ना समझो तो आगे जो मानव जीवन है उसको बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिला है।
0: तो भैया संरक्षण करण के उपाय भी हम अपने किसान साथियों को बता दे रहे हैं कि क्या उपाय करें जिससे कि जो हमारो पर्यावरण संरक्षण है या जो हमारो क्षेत्र है वो सही तरह से रहा है। तो जाके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और जैसे आप देख रहे हो कि वर्षा ऋतु आन बारी है, ऐसे में अगर हम जो फल खा रहे हैं ना अपने घर है वे वो अगर हम बागे गुठली इधर उधर फेंक देंगे तो वे भी जो है पौधा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, जाके संग संग किसान साथियों देखो एक पेड़ लगाने को हम निश्चय कर लें, जैसे हम कोई बर्थडे पार्टी मना रहे हैं फिर या फिर और कोई सालगिरह वगैरह मना रहे हैं तो उस पर आप कोई एक पेड़ लगाने को निश्चय कर लें तो हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी भागीदार अपनी निभा सकते हैं जैव विविधता में।
0: इसके साथ साथ जैविक खेती को हमें बढ़ावा देना चाहिए और देखो जैविक खेती के लिए हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी करें और जाके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चला रखी हैं। और जैविक खेती करेंगे ना तो रसायनों का प्रयोग, रासायनिक खाद, रासायनिक बीज और जो रासायनिक दवाएं ना इनको बचाव होता है, तो इससे जो है हमारी जो भूमि है उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, इसके साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
1: तो भैया आज 22 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम आपने बात कर ली, अब कुछ पत्र अपने सामने दिखा रहे हैं कंप्यूटर पे, तो इन्हें पढ़ लो जाए।
0: हाँ भैया देखो, हमारे बहुत से किसान साथी ने हमें पत्र भेजे हैं और हमें अपने किसान भाइयों के फ़ोन का भी इंतजार है, वे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-232-4326 पे, अगर हमें वे फ़ोन करेंगे तो उनकी जो खेती बाड़ी संबंधित समस्या होगी उसका समाधान करने को पूर्व प्रयास करा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से भैया हमारे ऐसे भी हैं ना जो हमारा कार्यक्रम अभी सुनना शुरू हुआ, तो उनसे हम जय कहेंगे भैया आप जो है हमारे कार्यक्रम में जुड़ें और जो है अपनी जो भी समस्या उसको समाधान करा सकते हैं।
1: तो भैया जो पत्र ग्राम गधैया हरसुनंगला मेला ग्रामपुर से मिलू है, लिखन वाले हैं श्री यदवीर सिंह, चंद्रहास, संजीव, देवेंद्र, भूपेंद्र, विनोद, सुरेंद्र और अरुण कुमार।
0: इनके भैया का समस्या है,
1: समस्या भैया की यूरिया इस समय खूब ना मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं जिससे हमारी फसलन के लिए यूरिया की कमी जो ही रही है वो पूरी ही जाए।
0: देखो भैया,
1: और जाके अलावा भैया दूसरी समस्या इन्होंने और लिखी है, एक समस्या इन्होंने लिखी है गन्ना में टॉप बोरर से कैसे बचें, और दूसरी समस्या लिखी है इन्होंने गन्ना में चिटी लग गई है, यानी वो छोटी छोटी जो चिटी पत्ती इनमें लग जाती है वो लग गई है, और भैया इसी विषय को लेकर द्वि पत्र और भी आए।
0: भैया कौन कौन से?
1: एक है ग्राम सैंजना मीरगंज बरेली से पप्पू, भागीरथ, देव कुमार, राकेश और मंजू को, इन्होंने जय जानो चाहो, और साथ ही साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी हमें पत्र भेजकर अपनी समस्याओं को समाधान करना चाहो।
0: भैया देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कही कि यूरिया की कमी है, देखो भैया यूरिया की कहीं पर कमी ना है, लेकिन सही तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में यूरिया मिल रही है। यूरिया मिलन के लिए सबसे पहले तो हमें फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है, बाइक के हिसाब से हमारे किसान भाई को यूरिया मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: आप जो है फार्मर रजिस्ट्री दिखावें और मशीन पर अपना अंगूठा लगावें, बाकी बाद में आपको जितो क्षेत्रफल है बाकी हिसाब से यूरिया आपको मिल जाएगी।
1: अनाप शनाप प्रयोग कर लेना है।
0: अब भैया देखो, होत कहा है कि अब हमारो 2 बीघा खेत है तब भी हम आधो कट्टा डाल रहे हैं, 3 बीघा है तो आधो कट्टा डाल रहे हैं, 1 बीघा है काऊ को तो मैं कहता मांगू आधो कट्टा डाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से होता है कि हम यूरिया को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो है फसल के साथ साथ हमारी जो सरकार पर सब्सिडी को बोझ है ना वो पड़ रहा है। इसके अलावा अब आप देख रहे हो कि खाद हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उसका भी फर्क है। इसके अलावा अगर हमारे किसान भैया ज़्यादा यूरिया डालते तो वासे ये नुकसान तो है, साथ ही साथ पैसा ज़्यादा खर्च होता है किसान भाई को, और इसके अलावा यूरिया ज़्यादा डालने से हमारी जो फसल है उस पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाते हैं,
1: और जो मिट्टी है वो भी खराब हो जाते हैं, यानी उसकी दशा खराब ही रही है। देख रहे हो आप कि पहले हमारे पड़ोस में एक खेत हो, उनने क्या करो गन्ना वो, तो हमने तो वहाँ में स्प्रे कर दी NPK वगैरह की, और तो उनने सोची कि जहाँ बड़ा अच्छा रंग है तो उनने 1 एकड़ में कम से कम 1.5 कट्टा से ज्यादा डालो। और अब की हमने उनसे कही क्यों भैया लगाया ना रहा जहाँ खाद, अरे बोले पिछली सेहर लगाया था यार सब गन्ना खराब ही हो।
0: हाँ, तो देखो अगर हमारे किसान भाई ने जो कही कि यूरिया ना मिल पा रही है भाई, जब अगर उनकी फार्मर रजिस्ट्री ना बन पाई है या उनके आसपास में खाद ना मिल रही है तो इतने घबराने की जरूरत ना है, नैनो यूरिया जो है आसानी से प्राप्त ही रही है। हमारे किसान भैया नैनो यूरिया की 1 बोतल ले लें और भैया 100 से 125 लीटर पानी में घोल बना के अगर गन्ना की फसल पर स्प्रे कर देंगे तो जो हम 1 कट्टा यूरिया डालते हैं ना बाकी बराबर जो है उनको पोषक तत्व बासे मिल जाएंगे और उनकी गन्ना की फसल जो अच्छी तरीके से बर्बाद करने लगेगी।
1: भैया अगली समस्या को समाधान करें उससे पहले एक फोन कॉल आ रही है उसको सुन लो।
0: भैया तो देखते हैं हमारे कौन से साथी लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो कृषिमन।
0: हाँ हेलो कृषिमन, कौन साथी बात कर रही हैं?
2: हेलो
0: हेलो
2: कौन? नमस्ते
0: नमस्ते, अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रही हैं आप?
2: मैं श्रीगंज से बोल रही हूँ, रामबती।
0: अच्छा रामबती जी, आपने आज हेलो कृषि मंच में फोन किया है तो क्या समस्या है आपकी?
2: आप मेरी ये समस्या है, मैंने गमला रखा लगा रखी है ऊपर
0: जी,
2: तो उसमें कोई भी पौधा लगाते हैं और स्प्रे भी कराए थी दवाई की, उसमें थोड़ी थोड़ी लग गई है और पता ना कैसी माव है, वो झाड़ते हैं पानी से स्प्रे करके फिर भी वो नहीं रुक पा रही है।
0: अच्छा,
2: और पानी लगाते हैं, गमला क्यों सूखे रहते हैं, बिल्कुल नमी रहती नहीं है उनमें।
0: तो
2: पानी लगाते हैं सूख जाती है।
0: देखिए ऐसा है, माहों की समस्या आपने बताई, दूसरा जो है बताया आपने कि पौधे सूख रहे हैं।
2: हाँ
0: जी, तो देखिए माहों के लिए तो आप जो है गमले लगे हैं, तो अगर जो हमारी ना स्प्रे वाली टंकी आती है मोटर वाली,
2: हाँ।
0: बस अगर ना प्रेशर खोल के अगर आप गमला के पौधा पर मार देंगे तो सारी जो वो है माहू वो नीचे गिर जाएगी, आपको हाँ। कोई भी दवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दवा लगाना भी चाहें तो इसके लिए थायोमेथोग्जाम नाम की दवा जो आती है उसका जो है 2% का घोल बनाकर अगर आप स्प्रे करेंगे ना तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सूखने की बात बताई, तो देखिए उसमें आप देसी घूरा या बर्मी कंपोस्ट खाद थोड़ी डालें और मिलाएं जड़ में, और सुबह शाम हल्का पानी दें। क्योंकि गमलों में होता क्या है कि दो समस्याएं आती हैं, एक तो नीचे छेद होता है तो पानी तुरंत नीचे निकल जाता है, दूसरा अगर छेद हम बंद कर देते हैं तो पानी ज़्यादा भरा रहता है तो उससे हमारी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो आप प्रयास करें गमले से हटा कर अगर पौधा जो है नीचे ज़मीन में लगा देंगी तो ये समस्या जो है आपकी वो नहीं रहेगी और आपके जो पौधे हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे।
2: अच्छा जी। और ये लौकी लगाई है हमने काली तुरैया,
0: हाँ
2: उसमें उंगली बराबर तुरैया आ रही है मेरी, और वो चिड़चिड़ आ रही है, पानी भी लगाते हैं सुबह शाम।
0: जी देखिए आपने जो लौकी की बताई कि तुरैया लौकी की जो वो आ रही है आपका फूल आ रहा है उसके बाद में फल बन गया छोटा सा, फिर वो सूख जाता है,
2: सूख जाता है, चूके गिर जाती है।
0: जी चूके गिर जाती हैं। तो देखिए इसके लिए आपको करना यह है कि पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो लौकी की बेल लगी हुई है आपकी वो किस जगह लगी हुई है, घर के किस जगह पे है।
2: एक तो अभी वो पौधा अभी तैयार नहीं हुआ है लगाई है,
0: हाँ।
2: और जो काली तुरैया लगाई है उस पर आ रही है काली तुरैया।
0: देखिए आप ऐसा करें उसमें पानी थोड़ा कम दें, गमले में तो नहीं है, नीचे जमीन में होगा ना ये पौधा।
2: नहीं वो कच्चा का वो बना हुआ है उसमें है।
0: अच्छा देखिए उसमें आप ऐसा करें जो हमारा बोरोन तत्व होता है उसकी कमी होती है तब भी हमारे जो फल हैं वो सही तरह से नहीं बन पाते हैं, आप बोरेक्स नाम की दवा जो आती है उसको थोड़ा मिट्टी में मिला देंगे उसके तो इस तत्व की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा पानी थोड़ा कम दें, ज़्यादा पानी देते हैं तब भी जो है फल जो है शुरू में बनते हैं बाद में गिर जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और एक तत्व आते हैं मिक्स वाले, वहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जो मिलता है, अगर आप वहाँ से थोड़ा लेंगे बाजार से और उसको वहाँ जमीन जहाँ पर आपका पौधा है वहाँ मिला देंगे तो जो भी तत्व की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी और फिर आपकी जो काली तुरई की बेल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी और आपके जो फल हैं वो रुकेंगे भी। ठीक है।
2: और देसी खाद तो हमने मिला रखा है गमला में भी और जो उसमें मिट्टी लगाई है।
0: तो दूसरा देखिए इस बार गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है और आप इसको भी ध्यान रखें कि ज़्यादा समय तक उस पर धूप ना आए, ऐसे स्थान पर उसको रख दें क्योंकि हवा अगर आदान प्रदान ज़्यादा होता है तब भी पौधे थोड़े सूख से रहें, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए।
2: और सर जी ऐसा है अमरूद का पेड़ है उस पर इतना अमरूद आया, पेड़ सा पेड़ नहीं है, 2 फीट का पेड़ है और उस पर कम से कम 2 किलो अमरूद आए थे।
0: जी जी
2: सारे हिल गए, सारे हिल गए।
0: जी जी जी तो देखिए अमरूद पे इस समय जितने फल आते हैं सारे फल तो नहीं रुक पाते हैं और कुछ फल रुक भी जाते हैं, कुछ फल झड़ भी जाते हैं, लेकिन
2: नींबू भी गिर रहे हैं, अमरूद भी गिर रहे हैं, सब हिल हिल कर।
0: जी जी तो हमें ऐसा लगता है कि आपके जहाँ पे ये पौधे लगे हुए हैं वहाँ बोरोन तत्व की काफ़ी कमी है, आप बोरोन तत्व की पूर्ति के लिए बोरेक्स नाम की जो दवा आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो समस्या है आपकी ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते
1: भैया। देखो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं कि कुछ किसान साथी क्या करते हैं, जैसे हमारे घर पे जो माता बहन है वे क्या करती हैं अपने छत्तन पे गमलों में लगा लेती हैं, तो उसमें ऐसी समस्याएं बहुत सी आती हैं, जैसे इन्होंने अभी पूछी रामवती जी ने कि हमारे गमला सूख रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर गमलन में हम रोज पानी लगा रहे हैं फिर वो भी सूखते चले जा रहे हैं, तो जाके लिए हमारे साथी जो कर रहे हैं जैसे कोई गमला जो ज़्यादा सूख रहा हो उसमें पानी भीतर तक ना बैठ रहा हो तो उसके लिए एक टब ले लें, बाह में पानी भर लें और उसके लिए उसमें गमला के लिए 24 घंटा के लिए या फिर 36 घंटा के लिए रख देंगे तो जे समस्या से निजात मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो समस्या उन्होंने बताई वो गर्मी की ज़्यादा समस्या है, इस समय गर्मी से अपने पेड़ पौधों को बचाए रखेंगे तो आपके जो बगीचा है वो अच्छा रहेगा।
0: और हिमपल भैया देखो और हमें लग रही है हमारे किसान साथी फ़ोन कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा साथी हमारे बात कर रहे हैं।
1: हेलो
3: हेलो हाँ जी कृषि मंच कार्यक्रम।
1: हाँ हेलो कृषि मंच, रामपुर से बोल रहे हैं, आप कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं चौधरी राजवीर सिंह बोल रहा हूँ, गांव खाबरी अब्बल बिलारी।
1: अच्छा कैसे हैं चौधरी साहब?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप लोग कैसे हैं सब?
1: बस बढ़िया है, आप लोगों की दुआ है। और इस समय गर्मी से कैसे निपट रहे हैं?
3: अरे साहब गर्मी से तो बिल्कुल आफत आ गई है, फसलें जो है बिल्कुल मुरझा रही हैं, दिन रात ट्वेल चल रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसी गर्मी में अपन और अपनी फसलों को सबको बेहद ध्यान रखना चाहिए। और आज आपका फोन लगा है तो आज आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं?
3: मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब कि जो अभी हमारे खेत अब खाली पड़ा हुआ है, तो क्या हम उसमें जो गन्ना बो दें तो क्या वो हमारी उगे आएगा?
1: देखो अब गन्ना की जो भी बुवाई करेंगे बहुत ही पिछाया हो गया वो। अगर आप उसकी बुवाई करेंगे, मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसे में पता चली कि बाद में जब हमने हिसाब किताब जोड़ी तो पता चली कि लागत हमारी बहुत ज़्यादा आएगी, पैदावार बामुख कतई ना निकली, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ़ायदा की जगह नुकसान होने की संभावना रही। तो ज़्यादा ही अच्छा रहा है कि आप इस समय उस खेत की गहरी जुताई कर दें और मिट्टी की जाँच करा लें, उसके बाद उसमें धान लगा दें या फिर और कोई फसल लगा दें।
3: अच्छा यानी गन्ना ना
1: बोएं अब? ना गन्ना बोने का अब समय नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पिछाया हो गया अब ये गन्ना, तो लेट वैरायटी अब लेट इतनी कोई लेट वैरायटी भी नहीं है जो इस समय जाके बोई जा सके।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ हाँ, तो आप हरी खाद का उसमें बो दें कोई ना कोई और गहरी जुताई कर दें और उसमें फिर उसके बाद कोई फसल कर दें, कोई सब्जी वाली फसल कर दें या फिर धान वगैरह भी कर सकते हैं।
3: हाँ धन्यवाद सर, आपने हमारी समस्या का समाधान करा।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: हिमपाल भैया देखो इन किसान भाई इनकी समस्या को समाधान तो ही गो, और अब देखते हैं हमारे कौन से साथी ने हमें पत्र लिख के भेजे, वे पत्र भैया देख लो।
1: भैया पहले तो जो पहले पत्र पढ़े बाकी दो समस्याएं रह गई उन पत्रन की, तो गन्ना में टॉप बोरर से कैसे बचे जो भी उन्होंने जानना चाहो।
0: भैया देखो गन्ना में जो समस्या है ना कीड़ा की, इस समय कीड़े की समस्या ज़्यादा है। दूसरा अगर हम दवा इस्तेमाल कर भी रहे हैं ना तो इस समय दवा भी ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद में बाकी रिजल्ट ना रोक पा रहे
1: क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है।
0: तो ऐसे में हमारे किसान साथी सबसे पहले तो जब बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हमने पिछली बार कौन सी दवा लगाई, तो वो तो इन्हें बताई ना है कि हमने पिछली बार कौन सी दवा लगाई, क्योंकि दवा जो है जो पिछली बार लगाई बाद से अब आपको अगली दवा थोड़ी तेज ही डालनी पड़ेगी,
1: बदल कर लगाने पड़े
0: तभी उसकी रोकथाम सही तरह से।
1: और वैसे भी इस समय क्योंकि दो पीढ़ी तो टॉप बोरर की निकल गई है, तीसरी पीढ़ी इस समय चल रही है, तो आप बदल कर दवा लगा पाए। और अगर आपने चलो कोई दवा लगा भी दी और अगर फिर भी आप पूछना चाह रहे हैं तो किसान साथियों हम आपको बता दें कि इसके लिए आप इमीडा कि जो क्लोप्रिड नाम की जो दवा बाज़ार में आसानी से मिल जाती है उसको आप छिड़काव कर देंगे, तो जो टॉप बोरर की समस्या जो बाकी जड़ है यानी जो तितली जो उड़ती है वो अपना लार्वा छोड़ देती है, उससे अंडे बनते हैं, उससे फिर टॉप बोरर की समस्या ही जाती है, तो आप तितली को ख़त्म करने की कोशिश करें।
0: इसके अलावा हमारे किसान साथी प्रोपोनाफॉस प्लस साइफन मेथेन नाम की जो मिक्स दवा आती है उसका इस्तेमाल भी करेंगे तो दोनों तरह की समस्या समाप्त की जाएंगी, एक तो उनकी जो तितली उड़ रही है बहु और अगर जो गोब में बैठी भी आसपास में है सुड़ी उसकी भी रोकथाम हो जाएगी।
1: और किसान साथियों आपने जो चिट्टी की समस्या बताई उसके लिए आप थायमोथोक्जाम जो 30% एफएस में जो दवा आती है उसको अगर आप स्टिकर मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो वो भी आपकी समस्या हल ही जाएगी। अब भैया कोई फोन कॉल आइए उसको सुन लियो।
0: हेलो
4: हेलो कृषि मंच।
0: हाँ हेलो कृषि मंच, कौन बोल रही है?
4: सर नमस्ते।
0: नमस्ते, अपन कहाँ से बोल रही हैं आप और अपना नाम बताइए।
4: हम धर्मपुरे से बोल रहे हैं, ज्ञानवती।
0: अच्छा ज्ञानवती जी, आज आपने हेलो कृषि मंच में फोन किया है तो क्या समस्या है आपकी?
4: सर हमारे मतलब खेत में बैगन है लगे हुए, तो बैगन मतलब बहुत काने हो रहे हैं।
0: अच्छा कितने दिन के हैं बैगन आपके?
4: हो गए 25 दिन के, एक महीने के हो गए, एक दो महीने, एक डेढ़ महीने के हो गए शायद।
0: तो देखिए सबसे पहले तो आपके जितने ही बैगन हैं वो काने, उनको आप तोड़ाई करके खेत के बाहर कर दें और उसको गड्ढा खोद के दबा दें, ठीक है
4: सर।
0: और जो फल तोड़ने लायक है उनको तोड़ कर जो है बाजार में बेच लें। उसके बाद जो है आप इमामेक्टिन नाम की दवा आती है उसको जो है 100 ml दवा 100 लीटर पानी में घोल बना कर आप स्प्रे कर देंगी तो आपके जो फल काने हैं उनकी काने नहीं होंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा।
4: जी सर।
0: ठीक है।
4: और हमारे घर पे मतलब लौकी और तुरैया है, वो मतलब छोटी छोटी तुरैया लौकी आ रही है तो वो सूख रही है पीली पड़कर।
0: देखिए ये समस्या जो है इस समय

0: है, क्योंकि जो हमारे छोटे फल होते हैं बहुत कोमल होते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी प्रभाव है। दूसरा जो है पानी हमारे किसान साथी बार बार लगाते हैं उसका भी फर्क पड़ता है, और एक बोरोन तत्व की कमी होती है उससे भी फल हमारे जो हैं वो झड़ते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। इसमें आप ऐसा करें, सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक मिक्सचर आता है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें जो भी तत्व हो की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है पानी जो है रोज़ाना ना दें, और गड्ढे जो हमारा जहाँ जड़ है उसके पास में पानी ना दें, उसके चारों तरफ कम से कम 2 फुट तक सिंचाई करें, जिससे कि नमी बराबर बनी रहे। और अगर हम रोज़ाना एक ही जो जड़ है वहाँ पे एक मग्गा पानी डाल दो, उससे जो है काम नहीं चलता है, पौधे जो है उससे सही तरह से बढ़वार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। इस बात को भी आपको
1: जी
0: ध्यान रखना होगा। ठीक है,
1: जी सर।
0: आपने फ़ोन किया,
1: और
0: आपका बहुत
1: हमारे
0: बहुत
1: यहाँ पर
0: धन्यवाद।
1: पेड़ भी है, एक
0: जी काय का
1: नींबू का पेड़ है, तो उस पे नींबू मतलब पीले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे होके पीले पड़ के सूख जाते हैं वो। कीड़ा
0: अच्छा, कोई कीड़ा तो लगा हुआ नहीं है उस पे?
1: वो सफेद सफेद से वो हैगा भुनका की तरह।
0: अच्छा, देखिए इसके लिए आप, एक पौधा है आपका या दो हैं?
1: एक ही पौधा है।
0: तो इसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं, एक इमिडाक्लोपीड नाम की दवा आती है वो ले लें, या थायोमेथोग्याम नाम की दवा आती है इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे घर पे एक दो पौधे होते हैं उन पे आप
1: जी
0: किसी
1: जी
0: भी प्रकार का कीटनाशक ना लगाएं। ज़्यादा है तो आप थोड़ा सरप मिला के ना, जो हमारी मोटर वाली टंकी आती है
1: जी सर। अच्छा
0: या इंजन वाली, उसको आप खूब प्रेस से बढ़ा के, और अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे ना, तो जितने भी जो कीड़े हैं हमारे पौधे पे, क्योंकि नींबू का पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आराम से चारों तरफ से खूब अच्छी तरीके से जब हम स्प्रे करेंगे तो सारे कीड़े जो है वो नीचे गिर जाएंगे, और झाड़ू मार के उसको साफ़ कर दें। तो इस तरीके से आपको किसी प्रकार की दवा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका जो है कीड़े जो है वो नष्ट भी हो जाएंगे, और आपका जो फल है वो सही तरह से बन सकेगा। ठीक
1: जी
0: है
1: जी
0: कि आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमपाल भैया,
2: हाँ भैया,
0: देखो भैया और जो पत्र हैं उनको तो लियो रख अगली बार के लिए, और अब हम अपने किसान साथी उनको, देखो खेती बाड़ी से संबंधित तो बातचीत काफ़ी ही गई। हमारे किसान भैया खेती बाड़ी के साथ साथ पशु भी पालते हैं, और पशु से संबंधित हम अपने किसान साथियों को एक बढ़िया सी जानकारी करवा दे रहे हैं।
2: बिल्कुल भैया, तो किसान साथियों हम आपको सुनवाते हैं पशुओं में बांझपन समस्या कारण व निवारण। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे हैं हमारे भैया जसविंदर सिंह। तो साथियों आपो सुनो और हमू सुने जो जानकारी।
3: आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज कुमार, आप हैं वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बेलारी मुरादाबाद से। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब हमारे पशुपालक भाई पशु पालन का कार्य करते हैं, और कई बार देखा जाता है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। सबसे पहली समस्या ये आती है कि जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो कभी कभी समय से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, क्या कारण होता है?
4: किसान भाइयों नमस्कार। ये पशुओं में जो समस्या है गर्भधारण न करने की, ये आम समस्या है। यदि हमें पशुओं से अधिक लाभ लेना है तो हमारे पशु 60 से और 90 दिन के बीच में ब्याने के बाद गाभिन हो जाने चाहिए। यदि वे इस बीच में गर्भधारण नहीं करते तो हमारे पशु, हम ये मान के चलेंगे कि बांझपन की तरफ बढ़ रहे हैं।
3: जी
4: ये बांझपन की समस्या बड़ी खतरनाक समस्या है पशुओं में।
3: जी
4: इसी वजह से हमारा पशुपालन नुकसान में जा रहा है, हमारे पशुपालकों को पूरा लाभ पशुपालन से नहीं मिल पा रहा है।
3: डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि 90 दिन के अंदर लगभग हमारा जो पशु है वो गर्भधारण की अवस्था में आ जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या दुग्ध उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है?
4: दुग्ध उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। पशु ब्याने के 3-4 महीने तक कंटिन्यूअस एक जैसा दूध देता है, लेकिन जैसे जैसे ब्यांत का टाइम लंबा हो जाता है तो पशु का दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है।
3: जी डॉक्टर साहब बात आती है गर्भधारण कराते हैं जैसे हमारे किसान साथी, तो कई बार वो गर्भधारण रुक नहीं पाता है, तो क्या कारण होता है हमारे किसान साथी कई बार कराते हैं इस तरह का काम?
4: हमारे जो पशुपालक भाई है उन्होंने एक अवधारणा बना रखी है कि पशु जब रंभावेगा तभी हम पशु को गाभिन कराएंगे या बोलेगा चिल्लाएगा,
3: जी
4: लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पशु के जैसे हीट में आने के, गर्मी में आने के बहुत सारे लक्षण हैं
3: जी,
4: यदि हम उन लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा पशु, यदि हम समय से गैबिन कराएंगे तो गैबिन पशु हमारा रुक जाएगा। इसमें समस्या है, जैसे हमारा पशु डिस्चार्ज डालता है, पतला डालता है बिल्कुल पानी की तरह, तो हमें पशु को उसके, जैसे भैंस है, भैंस को 24 घंटे के बाद और गाय को लगभग 12 घंटे के अंतराल पे हमें गैबिन करा देना चाहिए। यदि पशु का हम चिल्लाने का इंतजार करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पशु बोलता नहीं। ये समस्या भैंसों में अधिकतर है, वे कम बोलती है तो उनकी ही निकल जाती है, गर्मी निकल जाती है और पशु हमारा गर्भधारण फिर नहीं कर पाता।
3: यानी कि समय का विशेष हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना है। जैसा कि आपने बताया कि जो समय है अगर उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे किसान साथी जरूर ही निश्चित ही सफल होंगे। और जैसा कि आपने बताया कि गर्भधारण कराते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, तो उनमें हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो क्या ध्यान रखें?
4: इसमें हमें ध्यान रखना है, जैसे हमारा पशु डिस्चार्ज डालता है ब्याने के लगभग, एक बार तो 45 दिन में भी हीट में आ जाता है
3: जी।
4: वो पहली फाल्स हीट बोली जाती है, उसे छोड़ देते हैं। दूसरी हीट में जब भी हमारा पशु आता है तो ये लक्षण देख के, डिस्चार्ज देख के हम पशु को गैबिन करा दे। और जब पशु को हम गैबिन कराते हैं तो उसके बाद में, गैबिन कराने के बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए 19 से 21 दिन बाद दोबारा पशु हमारे हीट में आया या नहीं आया। यदि हीट में नहीं आता तो हमारा पशु गैबिन रहने की संभावना है, और यदि दोबारा हीट में आता है तो हम पशु को फिर दोबारा से गैबिन कराएंगे। इसमें भी क्या है, कभी कभी पशु हमारा डिस्चार्ज पतला न डाल के वो गाढ़ा मटमैले कलर का या मवाद की तरह का डिस्चार्ज डालता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इसमें अंदर इन्फेक्शन है, और जब तक वो इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तब तक हमारा पशु गर्भित नहीं रुकेगा।
3: डॉक्टर साहब, कई बार हमारे किसान साथी इन सब लक्षणों को या तो देख नहीं पाते हैं या फिर देख भी लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उसके बाद जो समय होता है उसके आगे पीछे जब गर्भधारण कराते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। या तो वो समय से गर्भधारण कर नहीं पाता है या फिर रिपीटेशन बार बार हो जाता है। तो हमारे किसान साथी कैसे उन लक्षणों को पहचाने? कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं क्या इसके अलावा?
4: इसमें वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे जब पशु हमारा गर्मी में आता है तो गर्मी में आने के बाद में पशु के, जैसे पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यदि हम डेयरी पे दूध ले जाते हैं तो डेयरी पे दो चीज के नाप होती है, एक तो फैट की और दूसरा CLR की
3: जी।
4: तो फैट की मात्रा भी उस दूध में उस टाइम घट जाती है
3: जी।
4: दूसरा, पशु बार बार पेशाब करेगा, बार बार चक्कर काटेगा, चारा खाना कम कर देगा। यदि गाय हैं तो गाय में थोड़ा एग्रेसिव लक्षण आते हैं, ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो गाय एक दूसरे पशु के ऊपर माउंट करती है
3: जी।
4: इसमें यही लक्षण है, डिस्चार्ज जैसे वो पतला डालता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई डिस्चार्ज पतला भी डाल रहा, ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है, और हार्मोन यदि थोड़ा बहुत भी कम या ज्यादा मात्रा उसकी हो जाती है तो हार्मोन बैलेंस होने की वजह से पशु हमारा गर्भित नहीं होता। तो ऐसे समय में एक हार्मोन का इंजेक्शन आता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन
3: जी।
4: वो हार्मोन का इंजेक्शन लगाने के बाद में हम 1 से 1.5 घंटा बाद पशु को गर्भित करा दे तो उससे भी हमारे पशु में जो ये रिपीट होने वाली समस्या है वो नहीं आएगी, पशु हमारा गर्भधारण कर लेगा।
3: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बीच में बताया कि कभी कभी हमारे जो पशु हैं उनमें मवाद आता है, गंदा पानी आता है, और आपने बताया इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पशुपालक भाई क्या करें?
4: उसके लिए तो डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे। जब हमारा पशु जैसे हीट में आता है तभी उसका ट्रीटमेंट संभव है, उन्हीं के द्वारा हमारे पशु को स्वस्थ किया जा सकता है। जब तक पशु हमारा बिल्कुल पानी की तरह पतला और बिल्कुल साफ डिस्चार्ज नहीं डालेगा तब तक पशु में वो इन्फेक्शन बना रहेगा। ये जो पतला डिस्चार्ज डालता है ये इंडिकेटर का काम करता है कि अंदर जो भी अंग है प्रजनन में जो मदद करते हैं वे बिल्कुल ठीक है। यदि पतला पशु नहीं डालता तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि जब तक पतला नहीं डालता तब तक गर्भित रहने की संभावना नहीं के बराबर है।
3: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो इन्फेक्शन पहले सही हो जाए उसके बाद गर्भाधान कराएं या फिर उससे पहले भी करा सकते?
4: जब तक

0: हमारा पशु ठीक नहीं हो जाता,
1: तब तक नहीं
0: जो
1: कराना चाहिए
0: इन्फेक्शन दूर नहीं हो जाता, तब
1: जी।
0: तक हम पशु को गैबिन नहीं करावे। जैसे इस बार हीट में हमारा पशु आया और यदि इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन उस बार हम पशु को गैबिन नहीं करा के अगली बार पशु को गैबिन करावे,
1: जब
0: पहले
1: वो हीट पे
0: ट्रीटमेंट
1: आवे
0: करावे।
1: जी।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, इनके उपाय क्या हैं, हमारे जो किसान साथी हैं इन सब समस्याओं से बचे रहें, इनके लिए क्या करना चाहिए उनको?
0: पशुओं में बांझपन की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। ये जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु है, उन्हीं पशुओं में बांझपन की समस्या अधिकतर आती है। इसमें हमें पशु का खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हरा चारा दे,
1: जी
0: अच्छा रातब पशु को खिलावे संतुलित मात्रा में, और पशु के व्यायाम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि पशु का व्यायाम भी अच्छे से हो जाता है, तो पशु में बांझपन की समस्या कम आती है।
1: जी
0: समय समय पे पशु में हमें पेट के कीड़े की दवाई दे देनी चाहिए। यदि पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पशु के पेट में कीड़े होने की वजह से भी हमारे पशु बांझपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हम पशु को खिला रहे हैं, वे पोषक तत्व कीड़े चूस लेते हैं, हमारे पशु को उनकी आपूर्ति
1: नहीं हो
0: नहीं
1: पाती
0: हो
1: है।
0: पाती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो हमारे पशु हैं उन पे खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हरे चारे की बात की हमारे किसान साथियों के लिए आपने, तो हरे चारे में कितना और कैसे दें ताकि जो उनकी पूर्ति है वो हमारे पशुओं में हो जाए?
0: हरा चारा वैसे तो वर्ष भर यदि हमारे पशुपालक भाई या किसान भाई व्यवस्था कर ले, तो वर्ष भर मिलता रहे। जैसे नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास से हमारे पशु की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। सर्दी के मौसम में जैसे बरसीम है, जई है, वो खिला सकते हैं। इसमें हम इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हमें बिल्कुल खाली हरा चारा भी पशु को नहीं खिलाना चाहिए।
1: जी
0: यदि हमारे पास में ज़्यादा मात्रा में हरा चारा है, तो 1/3 भाग सूखा चारा उसमें मिला लेना चाहिए,
1: जी
0: और यदि हरे चारे की कमी है, तो 1/3 भाग कम से कम सूखे चारे के साथ में हरा चारा भी पशु को देना चाहिए।
1: जी बात आती है रख रखाव की, कुछ इसका भी असर होता है बांझपन पे?
0: रख रखाव में हाँ आता है, इसका असर देखने को मिलता है।
1: जी
0: जैसे हमारा पशु ब्याता है, तो ब्याने के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा फंस जाता है, जेर रुक जाती है, ऐसे उसमें आगे चल के हमारे पशु को दिक्कत आती है गर्भधारण करने में। तो उस टाइम जैसे पशु हमारा ब्याता है, तो ब्याते टाइम पशु का अच्छे से ध्यान रखे,
1: जी
0: उसका खिलाना पिलाना अच्छे से रखे। ये जो समस्या आती है बच्चा फंसने की या जेर रुकने की,
1: जी
0: अधिकतर जो कमजोर पशु हमारे होते हैं, उन्हीं पशुओं में अधिकतर ये समस्या देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल
0: तो यदि हमारे पशुपालक भाई पशु का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये समस्या फिर नहीं आएगी।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बांझपन समस्या कारण व निवारण से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने जो जानकारी सुनी बाखूबी सहो, पशुओं में बांझपन समस्या कारण व निवारण, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया जसमिंदर सिंह।
3: साथियों, अब कर लेते हैं मनोरंजन लाल मन चित्रकार के गाय इस लोकगीत से।

0: किसान भाइयों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो बाको आवाज़ दही लान मन चित्रकार ने, और हेमपाल भैया
1: हाँ भैया,
0: थोड़ी सी बात कृषि संकेत में कर लें कि अब हमारे किसान भैया फसल जो हमारे बोन चाह रहे हैं, बाकी मिट्टी को और खाद को किस तरीके से प्रबंधन करें जिससे कि अधिक पैदावार उनको मिल सके।
1: तो किसान साथी देखो, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है कि मिट्टी की जांच और जो गर्मी की गहरी जुताई है वो।
0: इसके अलावा हमारे किसान साथी मिट्टी की जांच के लिए आप जल्दी से जल्दी मिट्टी को नमूना लेके जो हमारे तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है या जिला स्तर पर है वहाँ जमा करा दें, जिससे कि धान की रुपाई जब तक हम करेंगे जब तक हमें जो है बाकी रिपोर्ट मिल जाए। भाई के हिसाब से हमें खाद डालना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, क्योंकि खाद प्रबंधन भी फसल बोन से पहले, फसल जो भी बो बोएं या फिर रोपाई करें उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मिट्टी की जांच करा लोगे तो आप उसके अनुसार जो उसमें बताई जाए उसी के अनुसार आप उसको प्रबंधन करोगे, और साथ ही साथ अगर आप जो मिट्टी आप तैयार करेंगे यानी खेत तैयार करेंगे उसमें कंपोस्ट खाद यानी गोबर की जो सड़ी गली खाद है उसको डाल दें, और जो भूमि उपचार है उसको भी आप देसी खाद मिलाकर अभी ऐसे अगर ट्रैक्टर में रख देंगे तो आपको जब समय आवे तब तक वो खूब अच्छी तरीके से बनकर तैयार ही जाए और अंतिम जुताई पर उसे डाल दें। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको आप ध्यान रखें।
0: और भैया देखो, अभी चलते चलते मौसम को हाल अपने किसान साथियों को बता दे रहे हैं। कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और भैया देखो, अगर हम बात करें वायुमंडल आर्द्रता की तो 28% रहने की संभावना है। हवा पश्चिम उत्तर पश्चिम से 27 किलोमीटर तक बहने की संभावना व्यक्त करी गई है।
1: तो भैया इस तरह से जो तो राय वो कल को मौसम को हाल। अब साथियों आप हमें अपने कार्यक्रम से विदा दो।
0: तो कल ने दोनों भैया
1: राम राम, राम।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अब आइए सुनते हैं मुश्तरी बेगम से गायन ठुमरी बोल जा पर मैं तोए पिया।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुश्तरी बेगम से गायन ठुमरी बोल थे जा पर मैं तोए पिया। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में अर्थात 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे श्याम मोहन और शुभा चटर्जी के गाए कुछ गीत। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रहेगा गीत गाता चल। आज रात्रि 9:30 पर पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी का आप सुनेगा एपिसोड 30। आज रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे लेखराज राठौर और साथियों की आवाज में कुछ आला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साथी सदस्य रहेंगे केदारनाथ रूपलाल कृष्णपाल और नथुलाल। आज रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा राग रंग। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे अशोक कुमार ढींगरा का सितार वादन राग यमन। तबले पर संगत कर रहे होंगे महफूज अली खां बंदिश 3 ताल। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर होगा।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले चार दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
5: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
3: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह

0: राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
1: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 to 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
2: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
3: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
4: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:31 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में अब आइए सुनते हैं श्याम मोहन और शुभा चटर्जी के गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे श्याम मोहन के गाए कुछ गीत। और अब इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं शुभा चटर्जी की गाए कुछ लोकगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे श्याम मोहन और शुभा चटर्जी के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 8 बजने वाले हैं। अब पेश है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल।

नमस्कार श्रोता साथियों, आज एक बार फिर हाजिर है आपकी आज की रेडियो मेजबान सरस्वती सिंह लेकर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। और आज इस कार्यक्रम की पहली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है अभिजीत की आवाज में खूबसूरत गीत फिल्म चलते चलते से। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से फरमाइश करता है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।

इसी क्रम में इसी गीत को सुनने की फरमाइश में अपना डिजिटल फरमाइशी लेटर हम तक भेजा है रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंडीबाई बागरी वंडिंगखेड़ा पंजाब से फरमाइश लिख भेजी है मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा कासगंज से अनुरोध करता है राधेश्याम शाक्या

फरुखाबाद साहब गंज चौराहा यूपी से सुनने वाले श्रोता साथी हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता सुजाता, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला, पूजा पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया और योगेंद्र नायक कासगंजी। मोहल्ला हलवायन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, लदावली जिला मुरादाबाद से इस फिल्म के गीत को सुनना चाहा है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का ये खूबसूरत गीत जिसे अपने स्वर से सजाया है अभिजीत ने।

चलते चलते फिल्म का भी आप ये गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है सलामी फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, और इस फिल्म के गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोता साथियों ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और इनके सभी साथीगण। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद रिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा। इसी क्रम में महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश करता है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यम आनंद, बोहरा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से अनुरोध करता है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह, एकम दमन और अभिजोत। गरीब निवास कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा नंदिनी, ललिता नारायण खड़से, आराध्या गणेश खड़से, वैष्णवी कार्तिक खड़से और इनके सभी साथीगण। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। हिंदुस्तानी रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुनने वाले श्रोता साथी हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लालमाता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता और शोभा। बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया। नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया। शीशगढ़ बरेली से फरमाइश करता है लियास द्रीसी, नाजरा द्रीसी, नईम द्रीसी, नदीम द्रीसी। शेरगढ़ टांडा से इकरार द्रीसी और सोनी द्रीसी। नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। हिंगोली महाराष्ट्र से अनुरोध करता है रामचंद्र इंगोले और गौतम इंगोले। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा।

अंकुश अरोड़ा और इनके सभी साथीगण। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए सलामी फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पर, आप सभी की फरमाइश पर।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म सलामी से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की युगल आवाजों में ये गीत फिल्म संघर्ष से। और इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए इच्छुक श्रोतागण है आप सभी। कभी रेडियो श्रोता संघ ढूंढी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, साथ हैं मास्टर अल कबीर। सोनबिल कुदाली असम से फरमाइश लिख भेजी है हितेंद्र दास, मानस दास, शेफाली दास, वर्षा दास और माधव दास। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, शोएब खान, साइमा खान, पुत्र मुस्तफा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और राहु भाई। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से फरमाइश करता है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से सुनने वाले श्रोता साथी हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई महन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। इसी क्रम में वारसी क्लब सिंधौली मीजगंज बरेली से फरमाइश लिख भेजी है जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरमगुड़िया शोएब खान। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से श्रोता साथी हैं राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी, ललिता नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से और इनके परिवार के सभी सदस्य। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन और उमा डोमीन, साथ हैं जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनंता और आशु भाई। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बलू निषाद और तरुण यादव। पद्म टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और आरती कुमारी।

अयोध्या से हुक्म कर्मा कर दिनेश वर्मा, मोहम्मद यासीन, संतोष भाकरे, फैजल इमाम, फागुराम यादव, शिव कुमार, महेंद्र मोदी, संजय मार्कंडे, रवि कुमार, राहुल, राजेश कुमार वर्मा, अनिल कुमार घोड़के, बरजेंद्र विश्वकर्मा, सुनील पाठक, नरेश मल्होत्रा, अरविंद कुमार वेद मीरा, लालगिरी गोस्वामी, मोहम्मद इशहाक जी, विजय सुरलकर, राहुल शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप सभी श्रोता साथियों की आवाज में लीजिए सुनिए संघर्ष फिल्म का ये खूबसूरत गीत सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की युगल आवाजों में।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आप सभी ने सुनना चाहा है सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में एक और खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है संगीत और इस फिल्म के गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी, ऊपरकोट मोहल्ला चाखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अजान अब्बासी, अबान और अब्बासी परिवार के सदस्य। साई विहार रामपुर से सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, श्रेय गौतम, अनन्य गौतम, ऐश्वर्य गौतम और कुश गौतम। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर।

पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी और इनके सभी साथीगण, नूरमहल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहा जहां, फराज जहां, रिफत जहां, अनुजा जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, बिजली मुरादाबाद से फरमाइश लिख भेजी है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से शाहिद भाई, आशिफ परवीन, मोहम्मद सैफ, सदफ, फातिमा अल्फिया, मोहम्मद सुफियान। बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भगवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी सानिका, बर्फगांव नादुरा से शिवाजी उगले और राहुल। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा, अनस और रेहान। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहरा अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर घावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे, योगिता कुमारी प्रियाली, पार्थ और समस्त हांगोणे परिवार। मेन मार्केट ग्राम व पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार। ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद माधव वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। अनारकली बाजार जगरों से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके सभी साथीगण। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाला और सुरेश वाडकर को फिल्म संगीत में।

और इसी क्रम में कार्यक्रम की अगली और अंतिम फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है धड़कन फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अभिजीत और अलका याग्निक और इस फिल्म के गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। बघेरा दुर्ग से संतोष, नामदेव, सार्थक और इनके सभी साथीगण। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमराना नाज, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गुलफाम मस्जिद करोला मुरादाबाद से मिराज अंसारी, इरशाद अंसारी, फरीद अंसारी और इनके सभी साथीगण। बंधु लोहार पोपलघट से माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। जालंधर सिटी पंजाब से सोनू, रविराज, गुलशन, लकी और इनके सभी साथीगण। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। गुवाहाटी असम से हरेन, नरेन। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव। सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमेन, प्रमिला डोमेन, आशा डोमेन, निशा डोमेन और समस्त डोमेन परिवार। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। वीरम गांव सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक धींगरा और विजय। कभी रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत। डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, संजू और इनके सभी साथीगण। जेल रोड रायगढ़ से सौरभ, तरुण यादव। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून। सदर बाजार मारवाड़ विलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र और प्रतीक चौहान। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए धड़कन फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Affairs. मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा का एपिसोड 30।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर यह पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहां आयोजित किया गया है और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
2: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
2: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं, तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। तो जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगीरों ने 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिराने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। तो इस और इस तरह मेरे रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
2: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
2: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
2: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो वो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से,
2: बड़े सहज रूप से।
1: क्या बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
2: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही, तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो उन पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये सुविधा है कि गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
2: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
2: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता ही नहीं। पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु के का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा।
2: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
2: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहां भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए दो शैली, वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी। तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा।

0: हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा,
1: जी
0: तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाएं
1: जी जी
0: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
1: वाह वाह।
0: इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से,
1: जी जी
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ। और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खास तौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है। कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी
0: मेरे गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया, हो गया।
1: जी
0: वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी, सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था, फिर भी
1: हाँ
0: अगर हुआ होगा तो चैन नहीं होता था
1: जी जी
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो ये सवाल ऐसा है।
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी
1: जी जी
0: हम रहे 5 बच्चे
1: अच्छा
0: मेरे पेरेंट्स के, तो
1: हाँ
0: सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
1: हाँ जी
0: चाहे लड़की हो या लड़का,
1: हाँ
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है।
1: वाह।
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: वाह। बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन
1: जी
0: वायलिन
1: जी
0: में,
1: जी
0: इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई, और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: हाँ क्या बात।

0: अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का। बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं अम्मा जी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है, वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
1: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली। तो कहां शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
0: बिल्कुल,
1: था।
0: बिल्कुल सही कहा
1: लोगों को
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन ने पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपने आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
0: जी, जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की।
0: जी।
1: जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, तो उन्हीं को हम, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में

0: सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी भी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए।
1: हाँ।
0: तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल चल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा तो वो देख रहे हैं कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा, अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, हम बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बार जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए। तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। तो हाँ चल, मुझसे मैं उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराज देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एकलव्य का। तो लोग तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह वो।
2: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
2: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है आजकल, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
2: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
2: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
2: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी का भाग 30। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं लेखराज राठौर और साथियों की आवाज में आला। साथी सदस्य हैं केदारनाथ, रूपलाल, कृष्णपाल और नथुलाल।

महीना कौ लगे मठिया में तेरी डंडल पर बिजा जत राय उन्हीं बात न पाई फूले हा मेरो

लोग कमाई तुम फिर आई बूझी बात तुम्हारी नाई भाई फिर के आई गड़ महुबे माई ठाकुर आला के दरबार अपने हाथन मूड़ काट के तो भैया ने दो चढ़ाए उन्हीं आला

अब तेरा सूला लहो सारा दनाई खंजर लहो अबीर मालिकान ए पोहा ज्वाला को छूटाए मलिके।

भाई शारदा या समान माँ भैया सुनो हमारी बात। अब तुम हालत नामा लिखे को बिकदारी खेता न के मैदान और एड़ लगा बाए पर बंदी की धरी ऊपर का उदौ उड़ाए कारी बदरिया के उर मामा ये उतारे साई लागो जाए आई होती लड़ाई यहाँ अंबर माई जैसे लड़ाई कोई यौ भाज ज्वाला टूटी पर आई धरती पाई संगा गिराए वीर मालिकान। अब तुम हाल सुनौखे तन को दैया चालक हो ना जाए अब ते सूल लहो सारद नाई लई घोड़ा पाई दो चलाए लिंगा बदल गई रन के बर के बैठो बीच का न पाई जाए जो तेरे सूल कहन माई लागो चिरके लिकर गहो बापार हिसके भोला बोला न लागो ठाकुर सरिसाह के मलिकान हो आदमी ताशाई निपटाई ओ हम खेलाई जो जय गाय जा जगदम्बा के मोहरा पाई हम साई नाई चलई तलवार मनसा चाहई जो लड़बे की भोला और ले हो मंगबाई करुओ पानी गरम होबे कोई न पाए बात न झेली जाए मलिके फांद पर घोड़ा साई और धरती माए पहुंचे जाए बड़ा डंड मलिके नाए भाने तालाए बजिया वीर मलिकान हरो गदबदा नरना हन्नाई ढिग ज्वाला के पहुंचो जाए सुमिरन न करके ये जगदम्बा को लाई बज रंग बली को नाम चरण मनाई लहे मलना के मनिया सुमिरे महोबे प्यार ना मत लाइके नुनियाला को जिनके ना करो झड़ा को जब सिंगा पाई दो नौ हाथ जड़ी तलवार ऐसो हाथ परो सिंगा पाई दो नौ पल गिरे खा राय एक आई लंकाओ सिंगा गिर गौ एक लंग पड़िया सहर दाम आए कहते मलहरो सर सहबारो माता सहर दाम आए हाँ तो ओहते पाई ना जा रही जा हम तुम्हारे दे आई बतलाई मनसा चाहे जो लड़े बेकी सिंगा है और ले ओ मंगबाई बोली लागी गई सारद के तख्ता तोड़ गई बापार ज्वाला उठ बैठी खे तन मई ढिल सिंगा के पहुंची जाए रुंड उठाई लहो सिंगा को औ मुंडा कौ लो उठाई रुंड से मुंड जोहड़ सिंगा को सिंगा फेरी करो तैयार अमृत श्री को जगत।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं लेखराज राठौर और साथी सदस्य केदारनाथ, रूपलाल कृष्णपाल और नथुलाल की आवाजों में अलहाव।

सुआ देर के कछुआ रसा माए पहुंचो इंद्रपुरी माए कछुआ देर के कछुआ रसा माए हाथ जोड़ के।

0: लड़ा हिंद्र तलोह कमाए सिंह मार दहो मलिके नाया पैदल भैन सहरता
1: हमें बढ़ाई दो।

भाई पीर मलारो सरसावारो पीर मलारो हम मगा की नखतान मलखे जन्मो उठाए

आउट द ऑफ एंगल जोर

ओ शोक मोप होइ कहत हनन ओता तुम गरिया ज्वाला दा बन ओता तुम गरिया ऐसे सूर पसंद मोहबे माय के ना राज करा पर ओ ऐसे सूर चलो जा तू मटियन का भाई भाई चलो जा मारेंगे मलिके का दिकदार खेतन के मार और घेर के मरियाई।

घेर के माराओ गे मालिक काओ एक बहत तो मकाओ बतला माई एक बहत तो मकाओ बतला माई एक लहंग काओ साताओ हो जाओ एक लहंग हो बहिरा मालिकान देख ले मन के की कैसे मनु महान गाय तरसाता के मनु महान गाय एक लंग का साता हो गई एक लंग का बोला लागे यो कनिका के लड़ाई तेल ओ तजना देबे ओ पहले बार करो खेतन मन के।

ना मारा।

बातन ओ बातन बातन भाई अब तेर सुन लहे साता ना खंजर भाई अब तेर सुन और सात हाथ साता के झूठा मन के दस मारा कल और सात हाथ सा साता रेता तीस पर गलाम मलके साथ और साता रेता

बाबा सिंह लाला अच्छा सिंह का अच्छा सिंह का धर के बाबा।

0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
1: ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਿਲਾ ਰਹਿ ਦਿਖੇ ਤਨ ਮਾਂ
2: अभी आप सुन रहे थे लेख राज राठौर और साथी सदस्य केदारनाथ रूपलाल कृष्णपाल और नथुलाल की आवाजों में आल्हा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम राग रंग में अब आइए सुनते हैं अशोक कुमार ढींगरा का सितार वादन राग यमन। तबले पर संगत कर रहे हैं महफूज अली खान और बंदिश तीन ताल।

कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार ढींगरा से उनका सितार वादन राग यमन तबला पर संगत कर रहे थे महफूज अली खां और बंदिश तीन ताल। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navaneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
1: Aaj humne cyber security, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.
4: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force investiture ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. He emphasized that India must adopt new strategies to address cyber threats, hybrid warfare and drone-based challenges. Short-range ballistic missile Agni-1 was successfully test-launched from the integrated test range at Chandipur, Odisha today. Ministry of Defence said that the launch validated all operational and technical parameters. The test was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful launch marks another milestone in India's strategic defence preparedness and reinforces the credibility of the country's minimum credible deterrence capability. Agni-1 is a short-range surface-to-surface ballistic missile developed indigenously as part of India's strategic missile program. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on 26th of this month at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
5: We
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और एफएम पर हमारी प्रातःकालीन सभा